रंगीला मूड हो या हार्ड ब्रेक बॉस, वी ऑल विल सर्वाइव एंड डांस. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका विथ यू ऑन क्लब मिर्ची. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Jessie, mommy. My name is Elsie Koo, and I live in Marlborough, New Jersey. I came to this country when I was 18 and went to college, graduated from college, worked in New York, and then moved to New Jersey, got married, and have three kids. I am a small business owner. I own a tutoring center, and also I'm the co-founder and the CFO for One Stop College Counseling. I'm also on the board of Kids Hub Media Network. I am also the National Marketing Director for UCA Pickleball. I'm really a typical New Jersey mom, I think, you know, have a career, but also have to juggle taking care of the kids, driving them to activities, all the typical stuff. And also in the process, I think doing too much for the kids that we forget to take care of ourselves. You know, in my youth, I was always around 137 pounds. And now I'm like 130. So I'm actually thinner than when I was in my 20s. But at one point, I was 185 pounds. And that is when I think when my kids were young and I have a hard time taking care of myself, having the time or, you know, to take care of myself because I have to take care of the kids and you end up just, you know, grabbing a quick bites, you know, eating out a lot. It really kind of ruined my health in a way. I had some symptoms of being thirsty and having to use the bathroom a lot. Someone told me I might be diabetic. Her husband had the same symptoms and died within a year from heart attack. And because of that, I was convinced I was going to die in a year from heart attack. And I set my family down to tell them, you know, especially my kids, to tell them that, you know, to prepare them with this deadly disease that I thought of. And it's the first time I cried in front of my kids. And but I was determined that I am going to reverse it. And I did a lot of research and I tried many things and some worked. Most of them worked. It's no secret. It's really changing your diet and exercise. I feel like everyone knows, but you know, we don't always do that until we have a wake-up call. So that was my wake-up call. I went to cardiologist and asked for a calcium scoring test, and that test came back that my arteries are equivalent to 80-year-old. I had to do even more than all those things I was trying. I already tried. I feel like I am the healthiest now at 57 than I was even in my 30s. My A1C came down from, well, it was in 2018, my A1C was 11.2, which was very high. And over time, because of all the things I did, I brought it down to 5.7. But for 7 or 8 years, it's been around 5.7, which is pre-diabetic. For those who are not familiar with A1C, 6.4 is where you're clinically diabetic and you need to take medication. So I didn't have to take medication. I went down to 5.7. For the first time in 7 years, it came down to 5.4. So I'm no longer even pre-diabetic. I'm actually normal now. If the mother is healthy, the kids are going to be happy. The family is going to be happier.
2: Jessie, mommy. Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot. 92.7. Mirchi.
3: Hello.
4: Sir, very good evening. May
3: पैक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे 2 मिनट दे सकते हैं?
4: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
4: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
5: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
4: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
4: ये स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
4: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
4: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
4: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
4: कौन बोल रहा?
3: रमेश बोल रहा हूँ सर।
4: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
4: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है इसमें, कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
7: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
4: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर इसमें।
4: 2 दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
8: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
4: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
4: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
9: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ आपसे, रमेश बोल रहा है।
10: सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, अब मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
11: थैंक यू
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटला।
12: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
13: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
14: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
15: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Constantini and much more.
14: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
16: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodfurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
17: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
18: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
17: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
19: लिसनर एम आई बैक टू बैक गाना सुनेगा,
20: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
21: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
22: Ladies and gentlemen.

0: न्यू जर्सी की सड़कों पे हसल तो बहुत देखा होगा, पर असली हसलर से मिले हो? रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स जर्सी मॉम्स, उन हीरोज के नाम जिनके पास केप नहीं पर सुपर पावर्स बहुत हैं। मिलिए ऐसी ही सुपर मॉम्स से, उनकी अनकही कहानियाँ
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट 92.7।
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
4: Oh no!
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: यू टर्न डाउन दैट जॉब टू बिकम अ डाइविंग इंस्ट्रक्टर?
7: या आई थॉट मा वुड से नो।
6: And
7: she said, build your life the way you dream it.
8: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Raised you to become. Conditions apply.
9: Tera kya hoga, Kalia?
10: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: It's 8:30 PM. Mirchi time check.
12: RK Jewels. Get real diamond jewelry at real price. Zero labor, zero extra charges. RK Jewels. Best quality, best price. TNC apply.
13: Ladies and gentlemen, we are gonna go.
14: On a ride.

इश्क बिना भी पार्टी चलती है, क्लब मिर्ची है शो का नाम। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ, बस बीट्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी लिरिक्स अ लॉट ऑफ टाइम्स ना तुम जानो ना हम।

Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi or Yontika. आप बोलो या ना बोलो, groove and beats यहाँ पे बोलती है non-stop. And अगर आप सोच रहे हो कि आप break लोगे थोड़ा, सो जाइए सजना.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Jessie mommy.
2: I am a kind of mother कि जो चीजें एक्सेप्ट करना सीख गई है, जो पहले ऐसे नहीं थी, बट मेरे बेटे ने मुझे आज ये बना दिया है. स्ट्रगल रोज का है, मदर्स का. इट्स नॉट अबाउट ओनली अ वन डे एंड प्रेज देम ओनली ऑन अ वन डे. सो मदर्स को क्या चाहिए? सिर्फ एक छोटा सा एप्रिसिएशन. बस आप वो दे दो, मदर्स खुश हो जाती है. उनको चाहिए थोड़ी सी हेल्प, ना कि आप फिजिकली ही करो, मेंटल सपोर्ट दे दो, वो स्ट्रांग हो जाती है. उनको बस वही चाहिए. आई एम अ स्पेशल किड मॉम, सो मैं सबसे पहले मेरे बेटे को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं यहाँ पे हूँ बस उसी की वजह से हूँ. सो जर्नी सबकी सेम नहीं होती है, बहुत डिफरेंट होती है सबकी. मेरी भी डिफरेंट है और स्पेशल मॉम्स की तो डेफिनेटली डिफरेंट होती है. और कैसा है, आज तक हमें यह चीज कभी पता नहीं चला कि स्पेशल मॉम्स क्या होती है, स्पेशल किड्स क्या होते हैं. हमने कभी आजू बाजू देखा नहीं होता है. तो मेरे लिए जब मेरा बेटा नहीं चला कि स्पेशल मॉम्स क्या होती है, स्पेशल किड्स क्या होते हैं, हमने कभी आजू बाजू देखा नहीं होता है. तो मेरे लिए जब मेरा बेटा हुआ, तब मेरे लिए

लाइक एवरी अदर मदर, हमने भी कुछ सपने देखे थे अपने बच्चे के लिए कि ये ऐसे स्कूल में जाएगा, ये करेगा, बहुत नॉर्मल चीज़ें. बट ये सब नहीं हुआ हमारे साथ. तो एक पॉइंट आया ऐसे कि हमें खुद को बहुत स्ट्रांगली खड़ा करना पड़ा, एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 ईयर्स. ये एक्सेप्टेंस आना बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज़ है कि हमारे साथ ये हुआ है और वी हैव टू एक्सेप्ट इट. ये एक्सेप्टेंस आने के लिए बहुत टाइम लगता है, एंड मैं वो सब स्पेशल मदर्स को मतलब वो इतनी स्ट्रांग होती है सच में कि ये वो एक्सेप्ट करके लाइफ आगे बढ़ती है उनकी. और क्योंकि हमें लाइफ में आगे चलना है, वी कैन नॉट स्किप इट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट. एक्सेप्ट करो, आगे चलो. फिर उसमें से हमें उसके तरफ हम किस नज़रिए से देख रहे हैं वो डिपेंड करता है, और वो तभी आता है जब हम इससे बाहर निकलते हैं. मतलब मेरे साथ तो इतने ऐसे, मैं आपको अगर अनुभव बताना चाहूँगी तो इतने हुए. जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मैंने तो ऐसे ऐसे सुना है कि आप क्या चाह रही है, आपका बेटा डॉक्टर बने, आपका बेटा इंजीनियर बनेगा, आप क्या चाह रही है. उस समय ऐसे लगता है, डॉक्टर हमें पता है हमारा बेटा ये सब नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट आप बोलो मत ये सब चीज़ें, हमें बस ये बताओ हम चाहते हैं हमारा बेटा या बेटी जो भी है जिनकी, बस इंडिपेंडेंट बने किसी, क्योंकि लाइफ में किसके साथ कब क्या हो जाए यू नेवर नो. हमारे लिए होता है, मतलब मैं इसलिए ये सब जर्नी इसलिए बता रही हूँ कि एट दैट मोमेंट बहुत सारे ख्याल आते हैं हमारे मन में कि आगे क्या होगा, हमारे पीछे क्या होगा, जब हम चले जाएंगे उसके बाद क्या. मतलब ये चीज़ें हम हमारी कभी छोड़ती नहीं है हमारा पीछा. सिंपल चीज़ है, जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके बाद बोलने सीखता है, आई माँ पापा सब बोलता है, हमने आज तक वो वर्ड नहीं सुना. तो पहले ये सब चीज़ों का बहुत बुरा लगता था, अभी भी सोच के कभी कभी लगता है. डेफिनेटली वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट रोबोट्स कि हमें ट्रेन किया है अब ऐसे ही करना है. हम भी टूट जाते हैं, बहुत कुछ होता है, बट वी हैव एक्सेप्टेड इट. हमें अब मेन थिंग कि उसको देख के जो हमें खुशी मिलती है, ही इज सच अ स्ट्रांग बॉय. ये मुझे ऐसे लगता है कि ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, ये एक अलग सोल्स होते हैं. वो जब इस दुनिया में, इस धरती पे आते हैं, उनका एक पर्पज़ होता है इस धरती पे आने का. मुझे लगता है हर किसी को इनसे बहुत कुछ सीखने जैसा है. हम इसी लाइफ के पीछे, पैसों के पीछे जॉब करना चाहिए, वो लाइफ की ज़रूरत है, बट लाइफ, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, उसका हमारे जीवन का पर्पज़ क्या है, वो हमें इनसे सीखने जैसा है. और वो मुझे इस बच्चे से इतना कुछ सीखने मिला है. आज मैं ये बात कर पा रही हूँ, हंस पा रही हूँ, सिर्फ इसी की वजह से. मैं बहुत रोई हूँ, कभी कभार अभी भी रोती हूँ. ऑब्वियसली ब्रेकडाउन होता है, हमेशा हम हंसते खेलते नहीं रह सकते, बट इससे देख के ये इतने स्ट्रांग होते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, उसके बावजूद वो बच्चे स्माइल करते हैं. आप सोचो, उनकी कोई डिमांड नहीं. माई बॉय इज 9 ईयर्स ओल्ड, उसकी कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं. मुझे ये कपड़ा चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, नथिंग. खाना दो टाइमली, वो भी भूख लगता है, ही डजेंट आस्क, वो भी भूख लगता है, बच्चा रोता है, शरीर की ज़रूरत है इसलिए वो सब मिलता है. बट द थिंग इज कि मोह माया नहीं, प्यार नहीं किसी चीज़ से. तो उन उन सोल्स का एक पर्पज़ है यहाँ पे आने का. तो हम, मुझे लगता है सारे ह्यूमंस को ये सब सीखना चाहिए उससे कि हम क्यों आए हैं यहाँ पे, हमें भी ऐसे बनना चाहिए. हम ये मम्मियों को मैं सब ये बताना चाहूंगी, हम उनके लिए जी रहे, राइट? तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए उनके फेस का. और इससे हो गया ना कि सारी मम्मियाँ, और मुझे 100% श्योर है हर एक स्पेशल मम्मी ये इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है. सब लोग यही सोचते हैं कि इनकी खुशी कितनी बड़ी है, इनका स्माइल देख के. और हमें ये सीख मिलती है कि छोटी छोटी अचीवमेंट्स में ही बहुत खुशी है. हम किसी बड़े करेंगे ऐसा नहीं, इनके छोटे छोटे माइलस्टोन. मेरा बच्चा अगर कुछ बोलने लगे, एक वर्ड बोल दे, तो हमें उसमें खुशी है. मेरा बच्चा, मेरा कभी वो हाथ अपने यूज़ नहीं करता, कभी गलती से मेरा उंगली पकड़ ले, ऐसा पकड़ ले, तो मुझे इतना लगता है कि मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ लिया. नॉर्मल बच्चे तो करते ही ये सब, बट हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है. आज ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, दुनिया में ऐसे कितने सारे बच्चे, या किसी को, जैसे आपने बताया कि किसी का बच्चा शायद एक्सपायर हो गया या कुछ हो गया, किसी बच्चा, उस मॉम को क्या करना चाहिए, कुछ नहीं कर सकते. और ये जो कहते हैं ना लोग कि हम समझ सकते

0: नो बडी कैन अंडरस्टैंड मेरी सिचुएशन, ना आप समझ सकते हो ना कोई और समझ सकता है। उस माँ की सिचुएशन ना मैं समझ सकती हूँ ना आप कोई समझ सकता है जिन्होंने अपना बच्चा खोया है। बट वो मॉम अगर आगे बढ़ के, क्योंकि उनको लाइफ तो जीना है, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो मॉम आगे बढ़ के अगर हंस के नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है, तो उसको बार बार वही चीज याद मत दिलाओ। समाज को, फैमिली को ये सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग भी उससे बाहर निकलना चाहते हैं। अब वही चीज दोबारा उसी में लगा लगा के उनको उसी सिचुएशन पे मत रखो। तो मैं सबको वही कहना चाहूंगी, मॉम्स तो सारी स्ट्रांग होती है, उसमें तो कोई डाउट नहीं।
1: Jessie mommy, mommy, Jessie mommy, mommy.
2: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
3: 92.7. You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey, and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

बैक अगेन क्लब मिर्ची जा रही है टीचर रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। और अगर बॉडी मूव नहीं हो रही है तो वाईफाई ऑफ करके डांस ट्राई करो, रेडियो पे दो क्लब मिर्ची का प्लेलिस्ट सॉलिड है। डीजे रिचर्ड इज द किंग ऑफ मे, हिज बर्थडे वाज ऑन फर्स्ट, सो हे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे वंस अगेन रिची।

के नशे में हर वीकेंड पे आ ही जाते हैं डीजे रिचर्ड एंड हिज प्लेलिस्ट ऑन क्लब मिर्ची। बाय द वे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे रिची। डीजे रिचर्ड के साथ मैं भी रहती हूँ, मेरा नाम है मिर्ची ओयो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Jessie mommy. Hi, I'm Pooja Kharade. I'm from New Jersey. I'm MS New York Universe 2025. I'm a single mother of a 5-year-old and I chose to be single mother. I'm very happy about my decision. I'm in a much better space of mind and at much peace, I would say. As a single mother, I feel like, yes, there are a lot of things I have to do independently. But if you are in the right space of mind, if you are at peace with yourself and if you are seeking the right help for yourself and taking the self-care, it's not that difficult. It's rather a very fulfilling journey. I wasn't against being single mother. I was more likely thinking about him, what my child needs, what example he should have in life. That's what the basic good parents do, right? Like you want to set good example for your children and what's right and wrong. 90% of women face this issue, Indian women. And they want to stay in the marriage just because they have kids. You know, when you have kids, you're getting emotionally dependent to other person. You're also sometimes financially dependent on other person. And that's why you choose to suffer than separate. So rather start in your home, that teach your daughters to be emotionally independent, teach your daughters to be financially independent so that you don't have to take nonsense from anyone. And a lot of men in our society, though they are so progressive, though they are so educated, they take advantage of this quality. I won't even call it a quality, but women, we are in general are emotional. You know, we think, okay, we should be taken care of. It's a very common, you know, mental propaganda we have. Since our childhood, we are taught, okay, you are raised in certain way, you are raised to do certain things. But life has changed now, the time has changed. So you should change too, right? And if you want to have your self-respect, if you want to have that space, and if you want to live life on your own terms, you have to be independent emotionally and financially. And that's the basic message I want to give to all the girls and their moms. I mean, I won't say it is too easy, okay? I will not say that. But the law in this country are very good. In New Jersey, New York, they're very equal. And they make sure, even if you're not financial, and a lot of people do not know this, even if you're not financially independent, you can still choose to separate. And the New Jersey government and the law provides child support to you. I'm trying to build a life here in USA. I come from a small town in India and came from Marathi medium. You know, I faced all that. Okay, ye English nahi bol sakti and all those things, you know, faced all those things. And I have come here. I have built my life. I'm working in a corporate firm. I did my master's. Living on my own terms, financially independent, raising my own child the way I want. And my goal is to influence mothers to choose life for yourself and not for others. Even if you are a mother, you have a life. God has given you a beautiful life. And you are so capable. Even if someone tells you, gaslights you, there is something called coercive control. Even if you go through that, seek right help to find yourself and stand on your own. And this is what the message I want to give it to the mothers. Child is not your barrier. He's not your obstacle. He's your power. So even if it's a girl or a boy, anything, children are your powers. They are not your weakness. So do not think of it like one. This is what I want to tell mothers, that you're so much capable of than what you think of.
2: Jessie mommy. Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot. 92.7. Mirchi.
3: Hello?
4: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हू इज दिस
3: कौन बोल रहा है
4: ये और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये
3: क्या मजाक चल रही है
4: क्या मजाक चल रहा है ये सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ सर क्या हाल चाल है आपके सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं सर कैसे हैं आप खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
5: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू
3: कुकड़ू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेह पूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिव जी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 732-357-8200। जय गुरुदेव। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go on a ride.

0: न्यू जर्सी की सड़कों पे हसल तो बहुत देखा होगा, पर असली हसलर से मिले हो? रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स जर्सी मॉम्स, उन हीरोज के नाम जिनके पास केप नहीं पर सुपर पावर्स बहुत हैं। मिलिए ऐसी ही सुपर मॉम से, उनकी अनकही कहानियाँ
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट 92.7।
0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Ready for this?
1: मैं और तू रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोन देगा काफी है हम और हमारे साथ क्लब मिर्ची एंजॉय कर रहा है पूरा देश. इनफैक्ट इंटरनेशनल है बॉस. क्लब मिर्ची जा रही है सैया जी. द बेस लाइन्स टू गुड.

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये ये ये।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Bana. Burka, burka. Navid wala burka. Mirchi burka.
3: Hello.
4: Hi. Ye call. बैंक से है, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
5: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
3: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
5: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
3: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
5: हाँ जी,
3: हाँ बोलिए।
5: 33501।
3: अच्छा
5: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
3: हेलो,
5: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
6: हाय।
5: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
6: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना,
5: हाँ?
6: धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
5: धोबी से
6: पूछ लीजिए।
5: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
3: हेलो
5: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
7: ये बेल जा रही है।
5: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
3: अरे भाई तू एक बात सुन, ये
5: आपके
3: हो
5: पास
3: क्या है?
5: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501।
3: हेलो,
5: हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
3: किस से पूछे जा रहे हैं?
5: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपको
3: भाई। ये क्या कंफर्म भाई, मेरा एटीएम कार्ड है
5: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
3: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना होता है।
5: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
7: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
3: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
3: अरे मैं कुकड़ू को।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
11: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

देगा। लाइफ हो या डांस फ्लोर, थोड़ा कंफ्यूजन जरूरी है। और अगर करना है क्लियर आपके थॉट्स और दिखाना है प्यार हम लोगों को, आ जाइए हमारे सोशल मीडिया पे, डीजे रिचर्ड ऑफिशियल, दैट्स हिम एंड ऑन योन देगा, AYNTIK, दैट्स मी ऑन इंस्टा।

Mix, only on Club Merchant.

0: न्यू जर्सी की सड़कों पे हसल तो बहुत देखा होगा, पर असली हसलर से मिले हो? रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स जर्सी मॉम्स, उन हीरोज के नाम जिनके पास केप नहीं पर सुपर पावर्स बहुत हैं। मिलिए ऐसी ही सुपर मॉम से, उनकी अनकही कहानियाँ
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट 92.7।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड
3: क्लब मिर्ची।

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो. देखा, लाइफ हो या डांस फ्लोर, थोड़ा कंफ्यूजन जरूरी है. और अगर करना है क्लियर आपके थॉट्स और दिखाना है प्यार हम लोगों को, आ जाइए हमारे सोशल मीडिया पे डीजे रिचर्ड ऑफिशियल, दैट्स हिम एंड ओयो. देखा, AYANTIK, दैट्स मी ऑन इंस्टा.

प्यार पे वारी जावा क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोन देगा फिलहाल तो शरारत लेवल हाई इनोसेंस ऑन एयरप्लेन मोड लेट्स गो वी हैव शरारत

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

और इसी हाई नोट पे वॉल्यूम थोड़ा कम, यादें फुल लाउड लेके एग्जिट मारेंगे. लेकिन जाने से पहले साइन ऑफ ट्रैक आपके लिए शिकागो बेबी. विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक. एंटिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बस पॉज होनी नहीं चाहिए आपकी डांसिंग. कैच यू ऑन द नेक्स्ट ड्रॉप.

Party people, volume full, mood on turbo. आज का सीन सिंपल है, no overthinking, only over dancing. और नाचने के बहुत सारे reasons भी है. पहला वाला reason है हमारे DJ Richard का जन्मदिन, जो कि 1 मई को आता है, मतलब लेबर उनका और happiness हमारा, जो कि हमें मिलता है क्लब मिर्ची से. Thank you so much Richard for making our weekends fantabulous. And here's your listeners, Dree, Ride Music, Shrijoy Bhattacharya, Shudipto Roy, DVJ Arv, AKD, Mahesh Chogle and Shahib Ghosh, wishing you a happy belated birthday. And may I add my name too? Mirchi Oyontika, giving you loads of love and a warm hug. Ishq bhi jal raha hai aur dance floor bhi chalega. So let's light it up. DJ Richard.

कुछ आज ग्रूव डिसाइड करेगा. द ट्यून इज टंटनन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका. एंड आई एम श्योर विद दिस काइंड ऑफ म्यूजिक वी आर ऑल गोइंग टू गेट लकी टुनाइट. Like the legend of the family.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ, आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
2: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है, नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए हैं, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
10: थैंक यू
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
11: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
12: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
11: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
1: एक ही होता है।
11: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
14: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

0: न्यू जर्सी की सड़कों पे हसल तो बहुत देखा होगा, पर असली हसलर से मिले हो? रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स जर्सी मॉम्स, उन हीरोज के नाम जिनके पास केप नहीं पर सुपर पावर्स बहुत हैं। मिलिए ऐसी ही सुपर मॉम से, उनकी अनकही कहानियाँ
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट 92.7।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: Radio Mirchi, it's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.
4: On a ride.
6: Club Mirchi.

बैक अगेन दिल में जो है बोल दे क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो अंतिका और इसी बीट पे छोड़ दो यार खुद को डांस फ्लोर के नाम पे सौंप दो चुप क्यों रहे.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Jessie mommy. Hi everyone, I'm Pallavi Tiwari. I'm a mom of two kids and I'm a Jersey mom. जब मैं मम्मी बनी तो मुझे ये समझ में आया कि first 2000 days of your child is very important in various aspects. Delivery होती है when you become a mom. आप मोटे हो जाते हो. You gain weight. आपके कपड़े आपको fit नहीं आते हैं. You don't like yourself looking in the mirror. And I was not that person. So it's been 6 to 7 years for me now that I'm doing strength training. And hands down, I mean, it's become so addictive to me that whatsoever it is, I can't leave my workout. I can't leave my gym routine for the day. Chahe din ke 10 exercises hain, bahut nahi hai, 25 minute hai. Usme beti teen ne teen baar disturb kar diya. Ek baar wo rone lag gayi, ek baar usko washroom leke jana tha. Par wo 20 minute ka exercise pura kara, bhale hi usme 40 minutes lag gaye. लेकिन करा. बेटा मेरे साथ पुशअप्स करता है और वो मुझसे अच्छा करता है. उसका फॉर्म मुझसे अच्छा है. छुट्टी के दिन दोनों आके चलो मम्मा एक्सरसाइज करेंगे, चलो स्क्वाट्स करेंगे. सवेरे उठते हमारे दिन की शुरुआत ऐसे होती है, कोई मेरे ऊपर चढ़ गया, मम्मा लेग प्रेस स्क्वाट्स विथ वेट कर रही है. अगर मैं कारपेट पे लेट गई तो चलो मम्मा लेग प्रेस करो, ऊपर आ जाएंगे मेरे. सो माई किड्स आर ऑल्सो. एंड फिर हम पार्क में जाते हैं तो हम जो मंकी बार्स होते हैं, वी डू इट टुगेदर. I also do it and show it to them and they also do it. So they know that mom loves fitness. And I'm so nice that I can see, it feels so nice that I can see ye unko bhi pass on ho raha hai. At some point in time, weight loss tha mera goal. Par ab weight loss nahi hai. Now it's gaining muscle mass. Skeletal muscle mass badhao. Strength badhao. Pull-ups karo. I'll be 40 next year. I want to be able to do pull-ups. I want to be able to do two sets of 12 push-ups each. So, अगर ये गोल मेरा 40 तक रीच हो गया, then I'm sorted.
0: Jessie mommy. Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey.

रंगीला मूड हो या हार्ड ब्रेक बॉस, वी ऑल विल सर्वाइव एंड डांस. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका विथ यू ऑन क्लब मिर्ची. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Hello?
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस,
2: कौन बोल रहा है
3: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
2: क्या मजाक चल रहा है?
3: सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
4: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कु।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

0: न्यू जर्सी की सड़कों पे हसल तो बहुत देखा होगा, पर असली हसलर से मिले हो? रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स जर्सी मॉम्स, उन हीरोज के नाम जिनके पास केप नहीं पर सुपर पावर्स बहुत हैं। मिलिए ऐसी ही सुपर मॉम से, उनकी अनकही कहानियाँ
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट 92.7।
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
2: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

इश्क बिना भी पार्टी चलती है, क्लब मिर्ची है शो का नाम। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ, बस बीट्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी लिरिक्स अ लॉट ऑफ टाइम्स ना तुम जानो ना हम।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
0: क्लब मिर्ची।

0: ready for this.
1: मैं और तू रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोन देगा काफी है हम और हमारे साथ क्लब मिर्ची एंजॉय कर रहा है पूरा देश इनफैक्ट इंटरनेशनल है बॉस क्लब मिर्ची जा रही है सैया जी द बेसलाइंस टू गुड

नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

बैक अगेन क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। और अगर बॉडी मूव नहीं हो रही है तो वाईफाई ऑफ करके डांस ट्राई करो, रेडियो पे दो क्लब मिर्ची का प्लेलिस्ट सॉलिड है। डीजे रिचर्ड इज द किंग ऑफ मे, हिज बर्थडे वाज ऑन फर्स्ट, सो हे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे वंस अगेन रिची।

के नशे में हर वीकेंड पे आ ही जाते हैं डीजे रिचर्ड एंड हिज प्लेलिस्ट ऑन क्लब मिर्ची। बाय द वे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे रिची। डीजे रिचर्ड के साथ मैं भी रहती हूँ, मेरा नाम है मिर्ची ओयो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: ये स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
2: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आप सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, अब मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
14: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: real hard. न्यू जर्सी की सड़कों पे हसल तो बहुत देखा होगा, पर असली हसलर से मिले हो? रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स जर्सी मॉम्स, उन हीरोज के नाम जिनके पास केप नहीं पर सुपर पावर्स बहुत हैं। मिलिए ऐसी ही सुपर मॉम से, उनकी अनकही कहानियाँ
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, इट्स हॉट 92.7।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: Radio Mirchi, it's hot.
5: Ladies and gentlemen.

कटेगा और बीट ड्रॉप होगी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका. आई जस्ट माइट प्ले दर्दे डिस्को नाउ फॉर यू. लेट्स

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: ready for this.
1: मैं और तू रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोन देगा काफी है हम और हमारे साथ क्लब मिर्ची एंजॉय कर रहा है पूरा देश. इनफैक्ट इंटरनेशनल है बॉस. क्लब मिर्ची जा रही है सैया जी. द बेस लाइन्स टू गुड.

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये ये ये।

0: गाने को गाया है मीका सिंह और असीस कौर ने, म्यूजिक दिया है व्हाइट नॉइस कलेक्टिव ने और लिरिक्स लिखे हैं वायु ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से, विया करवा दो जी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mir

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई तो एक बात सुन, ये आपके पास
4: पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किससे पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: ये क्या कंफर्म भाई, मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: मुझे बताना, ये सबको थोड़ी ना, दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना।
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
7: विके, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं खुकड़ू को।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पजा। लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

एमेच्योर एंड मैच्योर यो देगा लाइफ हो या डांस फ्लोर, थोड़ा कंफ्यूजन जरूरी है। और अगर करना है क्लियर आपके थॉट्स और दिखाना है प्यार हम लोगों को, आ जाइए हमारे सोशल मीडिया पे डीजे रिचर्ड ऑफिशियल, दैट्स हिम एंड ऑल यो देगा AYNTIK, दैट्स मी ऑन इंस्टा।

0: रियल प्यार। न्यू जर्सी की सड़कों पे हसल तो बहुत देखा होगा, पर असली हसलर से मिले हो? रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स जर्सी मॉम्स, उन हीरोज के नाम जिनके पास केप नहीं पर सुपर पावर्स बहुत हैं। मिलिए ऐसी ही सुपर मॉम से, उनकी अनकही कहानियाँ
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी।

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो देगा। लाइफ हो या डांस फ्लोर, थोड़ा कंफ्यूजन जरूरी है, और अगर करना है क्लियर आपके थॉट्स और दिखाना है प्यार हम लोगों को, आ जाइए हमारे सोशल मीडिया पे डीजे रिचर्ड ऑफिशियल, दैट्स हिम एंड ओयो देगा, AYNTIK, दैट्स मी ऑन इंस्टा एंड

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

0: It's Chicago, baby.
1: और इसी हाई नोट पे वॉल्यूम थोड़ा कम, यादें फुल लाउड लेके एग्जिट मारेंगे. लेकिन जाने से पहले साइन ऑफ ट्रैक आपके लिए, शिकागो बेबी. वी विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक. एंटिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बस पॉज होनी नहीं चाहिए आपकी डांसिंग. कैच यू ऑन द नेक्स्ट ड्रॉप.

0: की प्यास है।
1: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Pepperminty.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Murga, murga. Na vieta la murga.
2: Milchi, murga.
3: Hello?
4: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हू इज दिस,
3: कौन बोल रहा है
4: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
3: क्या मजाक चल रही है?
4: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
5: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बड़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू
3: कू।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है।
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: न्यू जर्सी की सड़कों पे हसल तो बहुत देखा होगा, पर असली हसलर से मिले हो? रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स जर्सी मॉम्स, उन हीरोज के नाम जिनके पास केप नहीं पर सुपर पावर्स बहुत हैं। मिलिए ऐसी ही सुपर मॉम से, उनकी अनकही कहानियाँ
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे?
3: हाँ,
2: हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ, आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
2: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है, नहीं भैया नहीं नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आप सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा है?
3: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, अब मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पगला
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: न्यू जर्सी की सड़कों पे हसल तो बहुत देखा होगा, पर असली हसलर से मिले हो? रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स जर्सी मॉम्स, उन हीरोज के नाम जिनके पास केप नहीं पर सुपर पावर्स बहुत हैं। मिलिए ऐसी ही सुपर मॉम से, उनकी अनकही कहानियाँ
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी।

गाने को गाया है अरिजीत सिंह और अकासा ने, म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। सुनते रहिए जब तलक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: इच्छा है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: 5G Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: दूसरों के प्रति शुभ भावना रखना भी दान का एक शुद्ध और पावरफुल रूप होता है। आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ज्यादातर इंसान इसके बारे में बात नहीं करता, और ये पहली बार मैंने सुना, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम दूसरों के प्रति सिर्फ हमेशा शुभ भावना रखें, वो भी एक तरह का दान है।
4: आप अगर किसी के प्रति हमेशा शुभ भावना रखते हैं, हाँ, तो वो एक एनर्जी है जो उनको जा रही है, प्योर पॉजिटिव एनर्जी उनको जा रही है, वो उनको एम्पावर करेगी।
3: अरे वाह,
4: क्यों हम लोग संतों से मिलने जाते हैं, गुरुओं से मिलने जाते हैं, सेंट क्वालिटी की आत्माओं से 2 मिनट के दर्शन सत्संग करने क्यों जाते हैं? वो हमें कुछ और थोड़ी ना दे रहे होते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस में बैठने के बाद हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम जो होपलेस से होते हैं, उनसे मिलने के बाद हम कहते हैं नहीं, अब हम कर सकते हैं। हमारे अंदर एक अलग प्रकार की ताकत आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। तो क्या हुआ, उनका वाइब्रेशन, उनके दो अच्छे बोल हमारे उमंग उत्साह को बढ़ा देते हैं। एंड आई समवन हु वाज फीलिंग वेरी होपलेस या बेसहारा, एकदम मेरे अंदर शक्ति आ जाती है। तो उन्होंने क्या किया, अपने वाइब्रेशन से, अपनी प्योरिटी से, अपने दो शब्दों से मेरे अंदर ताकत बढ़ी। इससे भरी तो कोई सेवा हो ही नहीं सकती।
3: बहुत बढ़िया,
4: इसको nice. कहते हैं मनसा सेवा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हर चीज दान देने लायक नहीं होती। सही दान वही होता है जो समझ और जिम्मेदारी के साथ दिया जाए। आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सेवा भाव के बारे में या दान के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो एक बार बहुत पहले हम बात कर रहे थे, आपने कहा था कि कुछ ऐसे दान है जो नहीं करने चाहिए, और मैं किसी से पूछ भी रहा था, वो कहते हैं कि कुछ चीजें नहीं देनी चाहिए। ये दो अलग विचार हैं, लेकिन इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, क्या चीजें हैं जो दान नहीं करनी चाहिए।
4: ऐसे तो हर प्रकार का दान अच्छा है, लेकिन दान के लिए कहते हैं पात्र देख कर करो।
3: अच्छा,
4: जो बात
3: सामने वाला जो है उसको
4: पात्र,
3: देख के करो।
4: हाँ,
3: अच्छा,
4: मतलब जिस चीज का आप दान कर रहे हो वो सफल तो होना चाहिए ना।
3: हाँ,
4: जैसे हम वाणी का भी दान करें, फॉर एग्जांपल हम किसी को सुना ही रहे हैं कुछ।
3: हाँ,
4: पर वो सामने वाला उस चीज में इंटरेस्टेड हाँ, तो होना चाहिए ना।
3: बट फिर इसमें जो वो है ना कि सेल्फलेस भाव कहाँ आएगा। अगर मैं ये सोच के करूँ कि सामने वाले सफल हो, तो कहीं ना कहीं मेरे की एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती
4: है। नहीं, सेल्फलेस भाव है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है।
3: अच्छा,
4: अकाउंटेबिलिटी भी तो है।
3: हाँ,
4: भावना में सेल्फलेसनेस है। जैसे हम धन का भी दान कर रहे हैं, हम सेल्फलेस हैं, पर सामने वाले ने उस धन के साथ क्या किया, उसने उससे कोई शराब पी ली, उससे कोई सिगरेट बीड़ी पी ली,
3: तो ये देखना भी हमारा कर्तव्य है।
4: पड़ता तो है, नहीं तो उसका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। कार्मिक अकाउंट है ना।
3: हाँ,
4: कर्म उतना आपका नहीं बनेगा जितना उसका बनेगा।
3: हाँ,
4: करने वाले का।
3: हाँ,
4: पर कहते हैं हर एक का।
3: अच्छा,
4: जिसने दान किया, जिसने उसको यूज किया, जिसने उसको औरों को दिया, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल। उसका बनता तो है, इसलिए दान पात्र देख करके करना होता है कि वो जो पात्र है उसमें सफल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या दान का सीधा रिश्ता हमारे कर्म और हमारी नियत से जुड़ा होता है? आइए इसे जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो कई बार क्या होता है, जैसे कोई मैं राह चल रहा हूँ, कोई गरीब बच्चे आए मेरे पास और वो कहते हैं कि मुझे भूख लगी, कुछ खिला दीजिए, कुछ पैसे दीजिए। पैसे नहीं देता हूँ मैं, लेकिन उनको कहीं जाके कोई अगर कोई रोल की शॉप हो या कुछ भी हो तो मैं उनको वहां से खाना दिलवा देता हूँ। अब मैं ये तो नहीं देख रहा वो खाना खा रहे हैं या बेच रहे हैं या क्या कर रहे हैं उसका, तो इसमें भी मेरा हिसाब
4: जहां तक कर सके जरूरी है। आजकल ये चीजें बहुत बढ़ती जा रही है। अब आप दान खाने की बात करें तो उसमें भी कई बार ऐसा होता है आपने खाने का कुछ दिलाया वो उसको आगे बेच देते हैं। सो बहुत ज्यादा भी उसके बारे में तो हम कहां तक ही जाएंगे।
3: हाँ जी,
4: लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो, कई बार इट इज वेरी इजी टू जस्ट गिव मनी। हम कई बार सोचते हैं अपने को भी एक सैटिस्फेक्शन होता है
3: कि हमने दान किया,
4: हमने कर दिया,
3: हमने
4: करने के लिए हाँ। कर दिया। पर जहाँ तक पॉसिबल हो अगर पात्र को आप चेक कर सके तो अच्छा है, बाकी अब इग्नोरेंस में कुछ हो जाए। जैसे होता ना हर चीज के लिए भी, ऐसे तो हम किसी को हिंसा नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को जान करके इंटेंशन के साथ तो किसी भी प्राणी को नहीं मारते, लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है कि हमारा ध्यान नहीं गया, कोई मर गया या कुछ हो गया, तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है अभी क्या कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन एक होता है कि आपका भाव था,
3: इंटेंट ही वही था,
4: और एक था कि भाव तो बिल्कुल नहीं था जहां तक हो सकता था। कर्मा में जो फर्स्ट चीज आती है इंटेंशन, स्टार्टिंग जो होती है ना कर्मा की, एक्शन में बाद में आता है,
3: पहले इंटेंट।
4: इट इज इंटेंट थॉट वर्ड एक्शन। इंटेंट अगर ठीक है फिर थॉट वर्ड एक्शन ठीक है तो ठीक है, उससे ज्यादा हम भी क्या कर सकते हैं।
3: बहुत अच्छी बात कही आपने।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: पहले अपनी इंटेंशन को पहचानना और फिर उसके हिसाब से एक्शन लेना क्यों इतना जरूरी होता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं।
3: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRB Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: चैरिटी का पुण्य तभी मिलता है जब दान निष्काम भावना से हो, क्योंकि भगवान कर्म से ज्यादा भावना को देखते हैं। आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो मैं किसी से ऐसी बात कर रहा था, वो कह रहे थे भाई समाज का सुधार हो रहा है, अगर इनको अपना नाम चाहिए भी तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो उनको बहुत सारी दुआएं मिली होंगी।
4: समाज का सुधार हो रहा है, देखो आपने जो कर्म किया उसका पुण्य तो मिलेगा, लेकिन जितनी प्योरिटी के लेवल थी उतना मिलेगा। हर चीज का आप 100% सेल्फलेस थे। हाँ। वो जैसे सुदामा के लिए दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण के पास गया तो उसके पास था ही क्या? दो मुट्ठी चावल, सेल्फलेस, तो रिटर्न में कहते उसको महल मिला। दान में ये नहीं होता आपने कितना किया, कभी भी ये नहीं होता कि दान में आपने कितना किया। इसलिए कहते गरीब का एक रुपया साहूकार का 1,000 बराबर है। भगवान भावना देखता है। तो भावना में सुदामा के क्या था? बहुत सेल्फलेस लव था अपने दोस्त के प्रति। तो दो मुट्ठी चावल था ही वो, लेकिन उसका कंप्लीट सरेंडर था। वो दो मुट्ठी चावल नहीं थी, इट वाज 100% कंप्लीट सरेंडर। तो कहते रिटर्न में उसको महल मिल गया। अब कभी कभी आप करते बहुत ज्यादा है, आपने किया बहुत लेकिन इंटेंट में उतनी प्योरिटी नहीं थी, तो रिटर्न तो मिलता ही है लेकिन फिर परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: you turned down that job to become a diving instructor?
1: Yeah, I thought Ma would say no.
0: And?
1: She said, build your life the way you dream it.
2: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Raised you to become. Conditions apply.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Positivity koi location thodi hai ki map pe dala aur pahunch gaye. It's a journey. Chalo is journey pe with Mirchi Recharge Mornings. Subah 6 se 8. Only on Mirchi. It's hot.
8: Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
9: क्या गिफ्ट देना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या फिर इमोशंस और एनर्जी का एक ब्यूटीफुल एक्सचेंज? आइए जानते हैं.
10: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी, सिस्टर श्रेया.
11: तो मैं अपने बहुत प्यारे दोस्त से बात कर रहा था और वो कहता है कि कुछ चीज़ों का दान कभी नहीं करना चाहिए. वो एक, मैं शायद ये सोच रहा था, मेरे बहुत प्यारे इंसान का गृह प्रवेश था, तो मैं ये सोच रहा था कि उनको गिफ्ट में क्या दूँ. तो मेरी नज़र पड़ी बहुत सुंदर एक गणेश जी की मूर्ति पे, तो मैंने कहा ये अच्छा है, ये ले जाता हूँ. तो मेरे दोस्त ने कहा कि भगवान को कभी गिफ्ट नहीं करते. तो उसने मुझे ये बोला था कि कहीं ना कहीं तुम अपने से दूर कर रहे हो अपनी दुआएं, जो ब्लेसिंग्स हैं. तो कुछ चीज़ों का, मैं इसको दान के पात्र में बात कर रहा हूँ, दान नहीं करते या गिफ्ट नहीं करते. ऐसी भी चीज़ें हैं जो दान नहीं करनी चाहिए या गिफ्ट नहीं करनी चाहिए?
12: पर्सनली मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता है. इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि अगर ऐसी कोई चीज हम किसी को देते हैं, तो जितनी बार वो उस चीज को देखेंगे, उनको और ही भगवान की स्मृति आएगी.
11: बिल्कुल उसी भावना से मैंने सोचा कि आप अच्छी चीज दे रहे हैं. और
12: अगर हम कोई भी चीज ऐसी देते हैं जिसको देख करके भी उनको उसकी याद आती है, कोई दोस्त ऐसा हो, कोई चीज ऐसी हो जो बार बार हमें भगवान की स्मृति दिलाए, उसके नजदीक लेकर जाए, ये भी पुण्य कर्म है. तो इनफैक्ट हमारे गिफ्ट बहुत स्पिरिचुअल और अलौकिक होने चाहिए, जो किसी को एम्पावर करे. कोई भी आप गिफ्ट देते हैं, अगर कोशिश करके, जैसे वो गिफ्ट में कोई एक अच्छा थॉट है, उस गिफ्ट में कोई भगवान की मूर्ति है, अगर वो व्यक्ति को एम्पावर करता है, तो भी तो वो आपकी दुआएं बनती है ना. तो ऐसा ही देना चाहिए, एक्चुअली कोई स्पिरिचुअल गॉडली गिफ्ट देना चाहिए.
8: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Are you a South Asian parent of a child with disabilities or special needs and feel isolated and helpless? Reach out to SKN Foundation's SCOPE program for their parent support group, educational empowerment programs, IEP consultations, job skills training for teens, and inclusive events year-round.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
2: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
3: यू टर्न डाउन दैट जॉब टू बिकम अ डाइविंग इंस्ट्रक्टर?
4: या आई थॉट मा वुड से नो.
3: And
4: she said, build your life the way you dream it.
5: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Raised you to become. Conditions apply.
6: Apne ghar mein toh har koi sher hota hai. लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
7: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, गिल्ट से बाहर कैसे निकले जब गलती सुधारी ना जा सके। अगर आपसे गलती हो गई हो, आप उसे दिल से स्वीकार भी कर रहे हैं, फिर भी आपका पार्टनर आपको माफ नहीं करता या अपनाने के लिए तैयार ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए?
3: बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो गिल्ट क्या होता है, रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, लेकिन गिल्ट अच्छा नहीं है
2: जी।
3: गिल्ट होता है कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स। रियलाइजेशन जरूरी होता है, आपने रियलाइज किया कि आपने गलती करी है, लेकिन गिल्ट होता है मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत खराब व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, नेगेटिव थिंकिंग है। वो आपको डिप्लीट करती है और चांसेस हो जाते हैं कि आपसे दोबारा गलती होगी।
2: ये बहुत जरूरी समझना।
3: हाँ, क्योंकि आप जितने कमजोर होंगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो 1 second ऑफ गिल्ट इज इम्पोर्टेंट। आप उसको 1 second ऑफ गिल्ट बोले या रियलाइजेशन बोले, वो रियलाइज करना जरूरी है। जिन्होंने सवाल लिखा उन्होंने रियलाइज किया है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो हमारे से गलती ही नहीं हो ये नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं मनुष्य गलतियों का पुतला, मना जो दौड़ता है वही गिरता है, जो चलता है वही फिसलता है। अगर आप कुछ करेंगे तो आपसे कभी ना कभी भूल हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए कि वो भूल अगर आप दोबारा करते हैं तो हम कई बार कहते हैं ये चॉइस है, आप फिर तीसरी बार करते हैं तो ये हैबिट है, चौथी बार करते हैं तो ये तो कैरेक्टर है, वो अलग चीज है। लेकिन आपने एक बार आपसे कुछ हुआ, आपने उस चीज को रियलाइज किया और आपने उस चीज के लिए अपोलोजाइज भी किया, फिर भी अगर सामने वाला नहीं स्वीकारता तो ये उनकी प्रॉब्लम है। इस प्लेटफॉर्म पर हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम में से कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जिससे कभी कोई गलती ना हो। हम सब गलतियां करते हैं, हम रियलाइज करते हैं, हम सीखते हैं, हम बेटर बनते हैं। और हमारे पार्टनर का ये, हम दोनों पार्टनर माना जो भी रिश्ते में है, लक्ष्य होना चाहिए कि हम दूसरा चांस दे कि व्यक्ति अपने को बेटर वर्जन बना सके। यही तो हमारा रोल है। पर कभी कभी हम इतने इमोशनली वीक होते हैं कि उनकी गलती से हम इतने हर्ट हो जाते हैं और उस हर्ट से बाहर नहीं निकलना चाहते और उसके लिए कंटिन्यूस किसी दूसरे को ब्लेम करना चाहते हैं। आप एक बहुत अच्छा व्यक्ति खो देंगे।
2: कभी कभी ये भी होता है कि शायद जो चीज है जिस कारण ये प्रॉब्लम हो रही है या जो गलती है वो शायद इतनी बड़ी है जिसके लिए सामने वाला आपको नहीं माफ करना चाहता। इट कुड बी अडल्ट्री, इट कुड बी समथिंग जो मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता।
3: कितनी भी बड़ी हो, अडल्ट्री भी हो, कितनी भी बड़ी हो, देन ऑल्सो आई फील कि अगर वो रियलाइज करते हैं एक चांस तो देना चाहिए। हैबिट है कि नहीं वो आप देखें। एक होता है कि आपने चांस दिया पर वो उनका संस्कार है, वो बार बार करते हैं, रियलाइज भी नहीं करते, उनके मन में उस चीज का कोई पश्चाताप भी नहीं है, वो है ही ऐसे इंसान, तब आप डिसाइड करें आपको क्या करना है। पर आप कहें कि वो एक बार भी ऐसा नहीं करेगा, ये होना ही नहीं चाहिए।
2: चांस तो देना बनता है
3: हर एक को। आज हमारे से भी कोई गलती हो सकती है, अगर हम गलती करते हैं और हमें कोई चांस देता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम कहते दोबारा नहीं हम कर सकते, हम इस व्यक्ति का फेथ नहीं तोड़ सकते। तो ये कह देना कि नहीं ये रेड फ्लैग है, ये एक बार हो गया तो रिश्ता ही खत्म, ऐसा नहीं होता। दो जने हैं रिश्ते के अंदर, हर चीज के लिए आपको तैयार होना चाहिए और कम से कम एक चांस तो हर एक को देना ही चाहिए। इतना जल्दी रिश्ता खत्म करना, वो भी तो फिर रिश्ते की कोई फाउंडेशन नहीं रहे ना।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: It's 7:30 a.m. Mirchi time check.
5: RK Jewels. Get real diamond jewelry at real price. Zero labor, zero extra charges. RK Jewels. Best quality, best price. TNC apply.

0: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
2: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार। दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार। दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर तन्मय महात्रे लिखते हैं कि लोग जज करेंगे, इस डर को कैसे हटाएं, खास करके रिच और हाईली एजुकेटेड लोगों के सामने।
3: अगर हमें इस चीज का फियर रहता है कि लोग हमें जज करेंगे, ये क्लियर निशानी है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम है। जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है, तब आपको बाहर का वैलिडेशन चाहिए होता है। आपको चाहिए होता है कोई आपको अक्नॉलेज करे, कोई अप्रूव करे, कोई कहे कि आप जो कर रहे हो वो बहुत सही है, चाहे वो इन्फ्लुएंशियल है। किसी के लिए वो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का वैलिडेशन होगा, किसी के लिए एजुकेटेड व्यक्ति का वैलिडेशन मैटर करता होगा, किसी के लिए रिच व्यक्ति का वैलिडेशन मैटर करता होगा। सामने वाले का फीडबैक लेना, उससे अपने को बेटर बनाने में कोई हर्जा नहीं है।
2: सही बात है।
3: लेकिन अपने किए पर डाउट करना, जिस क्योंकि कोई व्यक्ति आपको अप्रूव नहीं कर रहा, वो लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है। दोनों में फर्क है। मैंने कन्विक्शन से कुछ किया, मुझे फेथ है, लेकिन फिर भी अगर सामने वाले का कोई फीडबैक है, सो आई एम नॉट सो रिजिड ऑल्सो, वो ईगो हो जाती है। आई एम ओपन टू देयर फीडबैक, और अगर मुझे लगता है कि उनके फीडबैक में कोई वैल्यू है, आई एम रेडी टू चेंज ऑल्सो, लेकिन मैं वो ही करूंगा जो आपको पसंद है।
2: वो नहीं
3: मुझे सही भी नहीं लगता, लेकिन मुझे उसमें वैलिडेशन मिलेगा तो मैं वो करूंगा, वो लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है।
2: एंड तन्मय, ये बहुत जरूरी है समझना कि आप कुछ करें या ना करें, लोग तो जज करेंगे।
3: मैंने ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ भी आप करें, कुछ भी, लेकिन हर एक का कोई ना कोई ओपिनियन होगा, और वो सबका ओपिनियन आपके फेवर में हो ये नहीं हो सकता। इसलिए सबको खुश करने की, सबको प्लीज करने की ये हमारी
2: जरूरत नहीं है।
3: हाँ, ये नहीं होना चाहिए, पर्पस ही नहीं होना चाहिए।
2: सही बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: गिफ्ट के पीछे इंटेंशन क्या होती है और वही कैसे उसकी रियल वैल्यू डिसाइड करती है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक सवाल मेरा यह है कि कई बार उन चीजों का दान किया जाता है जिनकी अब आपको जरूरत नहीं है। तो मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि आपको जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस चीज की जो वैल्यू है वो आपकी नजरों में गिर गई है। जब आप किसी को वो चीज दान करते हो तो आप भी इस भाव से कर रहे हो कि यार इसको सलटाना है, निपटाना है, तो उसका जो आपको पुण्य वापस मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिलता जितना आपको मिलना चाहिए। ये भी सच है
4: 100%। अच्छा, देखो जब भी कुछ आप देते हो ना उसमें इंटेंट, अब आप जब कोई गिफ्ट किसी को दे रहे हो ऐसे देने चाहिए कि अगर वो गिफ्ट घूमकर आपके पास वापस आ जाए
3: तो आप भी उतनी ही मतलब मन से वापस लेते।
4: जैसे कहते हैं ना, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप समझे, वही गिफ्ट आपके पास लौट करके आना है। ऐसे दे जो आपको चाहिए वो आप औरों को दे।
3: वो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो चाहिए तो आप दे नहीं पाते।
4: यही तो फिर सेल्फलेस है ना। आप जब किसी को दे रहे हैं, हम लोग तो क्या करते हैं कई बार, आई डोंट नो, कई कई जगहों में तो क्या होगा, लिख के भी रखते हैं उसने इतना अमाउंट दिया था, उसने ये गिफ्ट दिया था, फिर देना होगा तो देखते हैं उन्होंने इतने का दिया था, मुझे भी इतने का ही
3: देना। हिसाब बहुत जरूरी है। कई परिवारों में इसका हिसाब रखा जाता है।
4: एक्चुअली में उस समय पर आपकी जो भावना है
3: वो देख कर
4: आप वो दीजिए। आप इसमें हम ये भी नहीं देख सकते सामने वाला इतना कर रहा है, कई बार आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं है। इट इज नॉट अबाउट गिफ्ट ऑल्सो एक्चुअली, वो चीज की बात नहीं होती है। चीज तो एक मीडियम होता है। कई बार चीज बहुत महंगी होती है लेकिन चीज की वैल्यू नहीं होती, चीज के पीछे जो भावना होती है।
3: बिल्कुल।
4: कई बार आप देखे स्कूल में वो बच्चे होते हैं, मदर्स डे होगा, फादर्स डे होगा, कैसे कार्ड बना देते हैं वो अपने हैंड उसे क्रेयॉन से,
3: वो सबसे ज्यादा वैल्यूबल होता है।
4: क्यों, कितने 10-20 साल के बाद भी अपने
3: मेरे कबर्ड में रखी हुई है।
4: तो आपने क्यों संभाल के रखा हुआ है, वो तो कोई बहुत वैल्यूबल चीज भी नहीं है। उससे ज्यादा महंगे प्रेजेंट शायद आपके बच्चों ने आपको बाद में गिफ्ट किए होंगे, लेकिन उसके अंदर वो भावना है। आज भी आप उसको उठाएंगे तो वो भावना आपको पहुंचेंगे। तो वो चीज की इतनी वैल्यू नहीं है लेकिन वो सामने वाले के पास भावना पहुंचती है। अच्छा, इन्होंने मेरे लिए सोच करके ये चीज मुझे गिफ्ट दी है, सो इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स टुवर्ड्स देम। बस वो भावना से वो चीज हमें देनी चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: गिफ्ट का असली कनेक्शन प्राइस से नहीं, भावना और इमोशन से होता है। आइए इस खूबसूरत सच को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मैं जो बहुत छोटा था तो मेरी एक मामी थी और वो मेरे हर जन्मदिन पर मुझे एक ऑरेंज स्टिक जो आइसक्रीम आती है वो हमेशा दिलवाती थी। उसका मूल्य कुछ खास नहीं था और ऐसा भी नहीं था कि मुझे वो पसंद थी बहुत ज्यादा, लेकिन हमेशा मैं याद रखता था। और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, जब भी जन्मदिन पास आता तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन होने लगती कि वो आके मुझे देंगी, और वो जो भावना जिससे वो लेके आती थी वो बहुत मुझे आज भी याद रहता है। तो ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि
4: एक्चुअली वो सिर्फ ऑरेंज स्टिक नहीं है ना, वो प्यार है,
3: वो प्यार है उनका, हाँ।
4: वो स्टिक तो नहीं है, उनकी ब्लेसिंग है। यू आर वेटिंग कि वो जो फीलिंग है वो वापस आएगा। तो चीज कई बार बहुत छोटी भी हो सकती है, कभी कभी तो कोई चीज भी नहीं होती। इट कुड बी जस्ट वन फोन कॉल, इट कुड बी जस्ट वन मैसेज,
3: आप वेट करते हैं उसका।
4: हाँ, आप अगर किसी के लिए करते हैं, समझो कई बार क्या होता है, दिवाली आदि होती है, त्योहार होते हैं, हमसे जाया नहीं जाता, हमसे गिफ्ट्स खरीदे नहीं जाते, पर एक बन गया है ट्रेडिशन, हम जा रहे हैं, हम कर रहे हैं, अंदर परेशान हो रहे हैं, अंदर वेस्ट सोच रहे हैं, मन नहीं कर रहा है, बस काम पूरा कर रहे हैं।
3: ज्यादातर
4: ऐसा ही होता है, पर तब तो कुछ हुआ ही नहीं, उसका फायदा ही नहीं है। फायदा तो था कि आपने अपनी गुड विशेज उनको रेडिएट करी। आपसे अगर वो नहीं होता, आपसे वो गिफ्ट नहीं खरीदे जाते, नहीं दिए जाते। इफ यू आर इंटरेस्टेड, इट मेक्स यू हैप्पी, आप करें। अगर आपसे नहीं होता, समझो आपको वो कंफर्टेबल नहीं लगता, आपको उसमें खुशी नहीं मिलती, आप फोन करके भी किसी को बहुत प्यार से बात करेंगे ना, दैट इज ऑल्सो इनफ। इट इज रियली अबाउट योर फीलिंग्स, योर इंटेंट। चीज तो बहुत सेकेंडरी हो जाती है। हम ज्यादा फोकस किसके ऊपर करते हैं, वर्ड के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, गिफ्ट के ऊपर। फोकस ज्यादा किसके ऊपर करना चाहिए, इंटेंट के ऊपर, थॉट के ऊपर, फीलिंग के ऊपर। आपका इनर वर्ल्ड उन तक रेडिएट करता है। रिलेशनशिप इज जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी।
3: बहुत अच्छी बात।
4: वो एनर्जी उन तक पहुंचती है, उनको पता है ये मेरे से बहुत प्यार करते हैं, उनको उस चीज का एहसास है। हाँ ठीक है, नहीं आ पाए, कोई चीज नहीं दे पाए, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया ना, सारी वैल्यू अभी किस चीज की है, मटेरियल, मैटर। रिश्ता मैटर नहीं है, इट इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब आप प्यार से गिफ्ट दें और सामने वाला उसे सिर्फ वैल्यू में तोले तो उस सिचुएशन को इमोशनली कैसे समझें? आइए इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, क्योंकि हम गिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में आया कि कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं जाते हैं, बड़े सरल मन से आप कुछ चीजें बना के लेके जाते हैं, घर पे कुछ आपने खाना बनाया, द इंटेंट इज नॉट कि आप उनको गिफ्ट देना चाहते हैं, अपना प्यार आप देना चाहते हैं, कभी कभी दुआएं होती हैं, लेकिन सामने वाला शायद उसकी उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन उनको लगता है कि अब हम बड़े हैं या हम ज्यादा ज्ञानी हैं, ज्यादा हमें धन है, तो हम आपको इसका मूल देंगे, हम इसको 10,000 रुपए देंगे, आपको 1,100 रुपए देंगे एक्सेट्रा, और आपकी भावना वो नहीं होती। तो उस समय कहीं ना कहीं जो देने वाला होता है उसके मन में आता है कि मैं बड़े प्यार से कुछ लेके गया आपके लिए, या नहीं भी गया तो आई टुक माय टाइम आउट, मैं आपके पास आपसे मिलने आया। लेकिन सामने वाला अगर उसका हर बार रुपए में तोल मोल करे तो फिर ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करें?
4: जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, हमें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए।
3: हाँ,
4: ये भी तो एक्सपेक्टेशन है ना कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए।
3: अच्छा, ये तो आपने दुविधा में डाल दिया।
4: आपने अपने मन से जो करना था किया,
3: वो किया।
4: उनको भी तो अपने मन से जो करना है वो करेंगे ना,
3: लेकिन शायद मुझे वो पसंद नहीं है,
4: तो वो तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। सी, हम वो करना चाहते हैं जो हमें पसंद है, फिर हम ये भी चाहते हैं कि वो करें जो मुझे पसंद है। That makes me very very comfortable. वो मेरे लिए सबसे easy comfort की position होती है। मैंने वो किया जो मुझे comfortable था, चाहे मुझे gift करना था, cash करना था, कुछ नहीं करना था। कई लोग होते हैं कुछ नहीं करते ना, कई ऐसे होते हैं हमारे घर में function है, हमें कुछ नहीं लेना है।
3: हाँ बिल्कुल,
4: हम बस बुके लिया, नहीं लेना है। वो कहीं जाते हैं वो कर देते हैं।
3: हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है
4: क्योंकि सामने वाला स्वीकार करता है वो कर देते हैं। सो इट इज डिफरेंट, मेरे को जो अच्छा लगता है मैंने किया, दूसरे को जो अच्छा लगता है उसने किया। अभी मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूँ, दूसरा भी वही करे जो मुझे अच्छा लगता है, ये कैसे हो सकता है?
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एक हाथ ले वाली फीलिंग आए तो उस पल को कैसे हैंडल करें, आइए जानते हैं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
2: लेकिन जैसे आपने शुरू में कहा कि कई घरों में ऐसा होता है जो हिसाब रखते हैं, तो सामने वाला हमेशा कि कुछ ना कुछ पकड़ा जाता है, तो आपके भी एक कहीं ना कहीं आपको लगता है यार मुझे भी कुछ देना चाहिए। अब क्षमता में है या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन आप कहते हैं भैया आप ये प्लीज रख लें, और वो कहते नहीं हम नहीं रखेंगे। अरे भाई, आप हर बार दे के चले जाते हो, आपके घर में कोई बच्चा हुआ है या आपने गृह प्रवेश किया तो हम कुछ देना चाहते हैं, फिर आप रिफ्यूज कर देते हो, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत अजीबो।
3: नहीं देखिए, जो आपको करना है आप करें, वो आपका प्रिंसिपल है, वो आपकी ड्यूटी है, वो आपको करने में अच्छा लगता है, आपको करना है या नहीं करना है। सी, यू हैव टू डिसाइड। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई आता है, आपको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है,
2: आपने बनाया,
3: आप चार चार डिशेस भी बनाते हैं, आप उनको बहुत अच्छे से दावत कराते हैं, दिस इज समथिंग दैट यू एंजॉय डूइंग। नाउ यू गो टू देयर प्लेस, आप इसमें दोनों प्रकार की रख सकते हैं कि नहीं मैं तो करता हूँ आप नहीं करें,
2: ये भी हाँ भावना,
3: मैं तो करता हूँ मुझे अच्छा लगता है पर मेरे को आप पर बोझ डालना नहीं अच्छा लगता, आप नहीं करें, या आपको ये भी एक्सपेक्टेशन होती कि मैंने इतना किया था
2: तो उनको भी करना चाहिए,
3: तो भाई मैंने चार सब्जी बनाई तो उनको कम से कम दो तो बनानी चाहिए, उन्होंने तो मुझे चाय पूछी और किसी ने तो चाय भी नहीं पूछी। दैट्स वेयर रिलेशनशिप्स गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको जो पसंद था आपने किया, उनको जो पसंद है करने दीजिए, वो खिलाते हैं तो भी ठीक है, नहीं खिलाते हैं तो भी ठीक है, पूछते हैं तो भी ठीक है, नहीं पूछते हैं तो भी ठीक है, वो अपने संस्कार के अकॉर्डिंग करेंगे, आप अपने संस्कार के अकॉर्डिंग करेंगे। हमारे साथ क्या होता है, हम अपने संस्कार के अकॉर्डिंग करते हैं जो हमें करना है, एंड देन वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम अनदर पर्सन, एंड व्हेन दैट डजंट हैपन वी गेट हर्ट एंड डिसअपॉइंटेड।
4: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता, ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: किसी को कुछ देने में सिर्फ चीज नहीं बल्कि शुद्ध भावना भी जुड़ी होनी चाहिए। आइए इस दान के इमोशन को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: वो हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं, वो बड़े हैं आपसे, और इस बात का वो शायद कहीं ना कहीं जता देते हैं। तो आपको लगता है भाई अब उनके घर में हमें बुलाया गया है तो हम छोटा सा कुछ भी ले जाएं, और फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपको लगता है अरे अब मैं क्या करूं, मेरा तो मन है देने का और मैं बड़े प्यार से गया हूं।
4: तो आप देख कर आ जाइए।
3: वो रखते नहीं है उसको, तो क्या करें आप?
4: आप रख छोड़ आइए ना उनके घर पे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, आपको जो करना है आप कीजिए। अब आप कहेंगे वो नाराज हो जाएंगे या वो अपसेट हो जाएंगे, दैट इज देयर प्रॉब्लम। What is comfortable for you, आप वो कीजिए। फिर उसके बाद वो सोचेंगे उनको नेक्स्ट टाइम करना है नहीं करना है, कैसे करना है। आपको उनके अनुसार नहीं चलना है। यू डू वॉट यू फील कम्फर्टेबल, जो भी आपके लिए कम्फर्टेबल है, देन दे विल डिसाइड वॉट इज कम्फर्टेबल फॉर देम। हमें क्या है, हम वो करें जो हमें कम्फर्टेबल है, पर सामने वाला नाराज और अपसेट नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता। There are two things that we can do always. एक है कि हम वो करते हैं जो हमें सही लगता है, एक है हम वो करते हैं जिसमें सामने वाला खुश होता है।
3: ये choice है।
4: या हम वो करते हैं जो हमें सही लगता है, या हम वो करते हैं जिसमें सामने वाला खुश होता है। आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, टू बी कम्फर्टेबल विद योर सेल्फ और टू मेक अनदर पर्सन हैप्पी?
3: वो डिपेंड करता है सामने वाला कौन है, उस पे भी डिपेंड करता है।
4: जरूरी समझना ये है कि आप हमेशा सबको खुश नहीं कर सकते।
3: हाँ, बिल्कुल
4: नहीं कर सकते। इसलिए इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि जो आपको कम्फर्टेबल लगता है आप वो कर लें। अपनी फीलिंग्स को बहुत प्योर रखें। आपकी प्योर फीलिंग से सामने वाला धीरे धीरे आपको आज नहीं तो कल एक्सेप्ट कर लेगा। पर अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे वो आपको सफोकेट कर देगा। आपको बहुत बदलना पड़ेगा, बार बार बदलना पड़ेगा। यू विल लूज योर आइडेंटिटी। ये करेंगे तो वो खुश होगा, ये करेंगे तो वो खुश होगा, ये करेंगे तो वो नाराज होगा। इट गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको यही नहीं समझ में आएगा कि आप कौन है। सो डू व्हाट इज कम्फर्टेबल फॉर यू, हैव वेरी वेरी प्योर फीलिंग्स फॉर अनदर पर्सन। आज नहीं तो कल वो आपको समझ करके स्वीकार कर लेंगे, कहेंगे ये करते तो ऐसे पर वैसे बहुत अच्छे। सो गिव देम दैट टाइम टू एक्सेप्ट।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डिसीजन मेकिंग सिर्फ लॉजिक पर बेस्ड होती है या इंट्यूशन और इमोशंस का भी उतना ही बड़ा रोल होता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, अभी हाल फिलहाल में ना हम परिवार वाले मिले थे तो ऐसे पेरेंटिंग की बात शुरू हुई और हम अलग अलग जनरेशन के पेरेंटिंग हैबिट्स के बारे में बात कर रहे थे और कैसे वो अलग अलग सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो बच्चों की बात निकल आई कि जब बच्चे कुछ कीमती चीज मांग लेते हैं तो शायद हमारे जो दादाजी थे या परदादाजी थे उनका तरीका अलग था, वो कहते थे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बात वहीं खत्म हो जाती थी। उसके बाद आई हमारे दादाजी की जनरेशन, तो वो कहते हैं भैया तुम खुद कमाओ, जब तुम कमा सको तुम ले लेना, हम क्यों दें। फिर हमारे पापा की जनरेशन आई, वो कहते थे कि ठीक है एक काम करो, हफ्ता भर देखते हैं, अगर फिर भी तुमको उसकी जरूरत पड़ी तो हम आके ले लेंगे। तो पोस्टपोन करते थे डिसीजन और कई बार क्या है बच्चा व्यस्त हो जाता था, भूल जाता जो भी है, तो एक तरीका था उनका हैंडल करने का। अब आई हमारी जनरेशन जब कुछ पूछती है, और मुझे याद है स्पेसिफिकली मैं अपनी बेटी से बात कर रहा था, उसको शायद गिटार चाहिए था, तो मैंने कहा नहीं बेटा अभी नहीं, तो उसने कहा मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मेरे पास पॉकेट मनी मैंने बचा के रखी है, मैं जाके ले रही हूँ। और मैं अचंभे में रह गया, मैंने कहा हैं तो ये तो डिसीजन तो हुआ ही नहीं। तो ऐसे जब हम बात कर रहे थे हमको बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन मैं सोच में पड़ गया कि परमिशन वाली जो बात है वो धीरे धीरे निकलती जा रही है। तो ये हम बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, या हम उनको और फ्री कर रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, ये मैं समझ नहीं पा रहा था।
4: इसमें दोनों बातें हैं, परमिशन के बाद जब आप करते हैं तो कई बार तरीका बदल जाता है। आपकी डॉटर भी परमिशन ही ले रही है, लेकिन जो उसका जो तरीका है शी इज मोर इन्फॉर्मिंग यू। इन्फॉर्म भी क्यों करती है अगर उसको करना ही होता तो। कई बार जब उस समय पर कई बार ऐसा होता था हम बहुत डरते भी थे, थोड़ा सा वो रिश्ते में दूरी सी भी रहती थी, देयर ऑल्सो यू आर टेलिंग देम ओनली, वो परमिशन वाला हो जाता था। अभी जो हम शिफ्ट हो गए ना जैसे कंट्रोल से इन्फ्लुएंस में, अभी हम हर चीज को पूछते नहीं है लेकिन बता देते हैं, पर भावना अंदर रिस्पेक्ट की है। तो मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज तरीका नहीं, कि उसको उस चीज की जरूरत है कि नहीं।
3: वो जरूरी है,
4: वो बहुत जरूरी है। अभी क्या होता जा रहा है, हर चीज में जब हम बच्चे को यस कह देते हैं, दैट इज समथिंग दैट वी सी इन टुडेज जनरेशन, कई बार पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है और कई बार वो चीजों को हाँ करके अपनी गिल्ट को कवर कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि हम समय नहीं दे पा रहे हैं, उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, हम हर चीज को हाँ बोल रहे हैं, ये उनको लगता है हम प्यार कर रहे हैं। दिस इज देयर वे ऑफ गिविंग लव, कि मैं हर चीज को हाँ बोल दूं, अच्छा ये चाहिए ये भी ले लो, ये चाहिए ये भी ले लो। दे थिंक कि अगर मैं ना बोलूंगा तो बच्चे को लगेगा शायद मैं उनसे प्यार नहीं करता। जरूरी ये होता है कि उसको उस चीज की जरूरत है कि नहीं है। बच्चे को अगर कुछ चीजों के लिए ना सुनना पड़ता है तो वो उसकी इमोशनल रेजिलियंस डेवलप करता है। जो बच्चे कभी ना नहीं सुनते ना किसी चीज के लिए, जैसे फोन है, उस बच्चे को चाहिए कि नहीं चाहिए आप वो देखो। अगर उस बच्चे को, वो अभी 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसको उस चीज की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि सबके पास है या पीयर प्रेशर है, ये रॉन्ग पेरेंटिंग है। वो आपके बच्चे के रेजिलियंस को कम करेगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची It's hot.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर तन्मय मात्रे लिखते हैं कि लोग जज करेंगे, इस डर को कैसे हटाएं, खास करके रिच और हाईली एजुकेटेड लोगों के सामने।
3: अगर हमें इस चीज का फियर रहता है कि लोग हमें जज करेंगे, ये क्लियर निशानी है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम है। जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है तब आपको बाहर का वैलिडेशन चाहिए होता है। आपको चाहिए होता है कोई आपको अक्नॉलेज करे, कोई अप्रूव करे, कोई कहे कि आप जो कर रहे हो वो बहुत सही है, चाहे वो इन्फ्लुएंशियल है। किसी के लिए वो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का वैलिडेशन होगा, किसी के लिए एजुकेटेड व्यक्ति का वैलिडेशन मैटर करता होगा, किसी के लिए रिच व्यक्ति का वैलिडेशन मैटर करता होगा। सामने वाले का फीडबैक लेना, उससे अपने को बेटर बनाने में कोई हर्जा नहीं है।
2: सही बात है।
3: लेकिन अपने किए पर डाउट करना, जिस क्योंकि कोई व्यक्ति आपको अप्रूव नहीं कर रहा, वो लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है। दोनों में फर्क है। मैंने कन्विक्शन से कुछ किया, मुझे फेथ है, लेकिन फिर भी अगर सामने वाले का कोई फीडबैक है, सो आई एम नॉट सो रिजिड ऑल्सो, वो ईगो हो जाती है। आई एम ओपन टू देयर फीडबैक, और अगर मुझे लगता है कि उनके फीडबैक में कोई वैल्यू है, आई एम रेडी टू चेंज ऑल्सो, लेकिन मैं वो ही करूंगा जो आपको पसंद है।
2: वो नहीं
3: मुझे सही भी नहीं लगता, लेकिन मुझे उसमें वैलिडेशन मिलेगा तो मैं वो करूंगा। वो लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है।
2: एंड तन्मय, ये बहुत जरूरी है समझना कि आप कुछ करें या ना करें, लोग तो जज करेंगे।
3: मैंने ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ भी आप करें, कुछ भी, लेकिन हर एक का कोई ना कोई ओपिनियन
2: होगा,
3: और वो सबका ओपिनियन आपके फेवर में हो ये नहीं हो सकता। इसलिए सबको खुश करने की, सबको प्लीज करने की ये हमारी
2: जरूरत नहीं है।
3: हाँ, ये नहीं होना चाहिए, पर्पस ही नहीं होना चाहिए।
2: सही बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
4: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar. This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
5: Type C cable ke saath phone to charge kar loge. खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, गिल्ट से बाहर कैसे निकले जब गलती सुधारी ना जा सके? अगर आपसे गलती हो गई हो, आप उसे दिल से स्वीकार भी कर रहे हैं, फिर भी आपका पार्टनर आपको माफ नहीं करता या अपनाने के लिए तैयार ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए?
3: बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो गिल्ट क्या होता है? रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, लेकिन गिल्ट अच्छा नहीं है
2: जी।
3: गिल्ट होता है कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स। रियलाइजेशन जरूरी होता है, आपने रियलाइज किया कि आपने गलती करी है, लेकिन गिल्ट होता है मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत खराब व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, नेगेटिव थिंकिंग है। वो आपको डिप्लीट करती है और चांसेस हो जाते हैं कि आपसे दोबारा गलती होगी।
2: ये बहुत जरूरी समझना।
3: हाँ, क्योंकि आप जितने कमजोर होंगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो 1 second ऑफ गिल्ट इज इम्पोर्टेंट। आप उसको 1 second ऑफ गिल्ट बोलें या रियलाइजेशन बोलें, वो रियलाइज करना जरूरी है। जिन्होंने सवाल लिखा उन्होंने रियलाइज किया है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो हमारे से गलती ही नहीं हो ये नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं मनुष्य गलतियों का पुतला, मना जो दौड़ता है वही गिरता है, जो चलता है वही फिसलता है। अगर आप कुछ करेंगे तो आपसे कभी ना कभी भूल हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए कि वो भूल अगर आप दोबारा करते हैं तो हम कई बार कहते हैं ये चॉइस है। आप फिर तीसरी बार करते हैं तो ये हैबिट है, चौथी बार करते हैं तो ये तो कैरेक्टर है, वो अलग चीज है। लेकिन आपने एक बार, आपसे कुछ हुआ, आपने उस चीज को रियलाइज किया और आपने उस चीज के लिए अपोलोजाइज भी किया, फिर भी अगर सामने वाला नहीं स्वीकारता तो ये उनकी प्रॉब्लम है। इस प्लेटफॉर्म पर हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम में से कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जिससे कभी कोई गलती ना हो। हम सब गलतियां करते हैं, हम रियलाइज करते हैं, हम सीखते हैं, हम बेटर बनते हैं। और हमारे पार्टनर का ये, हम दोनों पार्टनर माना जो भी रिश्ते में है, लक्ष्य होना चाहिए कि हम दूसरा चांस दे कि व्यक्ति अपने को बेटर वर्जन बना सके। यही तो हमारा रोल है। पर कभी कभी हम इतने इमोशनली वीक होते हैं कि उनकी गलती से हम इतने हर्ट हो जाते हैं और उस हर्ट से बाहर नहीं निकलना चाहते और उसके लिए कंटिन्यूस किसी दूसरे को ब्लेम करना चाहते हैं। आप एक बहुत अच्छा व्यक्ति खो देंगे।
2: कभी कभी ये भी होता है कि शायद जो चीज है जिस कारण ये प्रॉब्लम हो रही है या जो गलती है वो शायद इतनी बड़ी है जिसके लिए सामने वाला आपको नहीं माफ करना चाहता। इट कुड बी अडल्ट्री, इट कुड बी समथिंग जो मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता।
3: कितनी भी बड़ी हो, अडल्ट्री भी हो, कितनी भी बड़ी हो, देन आल्सो आई फील कि अगर वो रियलाइज करते हैं एक चांस तो देना चाहिए। हैबिट है कि नहीं वो आप देखें। एक होता है कि आपने चांस दिया पर वो उनका संस्कार है, वो बार बार करते हैं, रियलाइज भी नहीं करते, उनके मन में उस चीज का कोई पश्चाताप भी नहीं है, वो है ही ऐसे इंसान। तब आप डिसाइड करें आपको क्या करना है। पर आप कहें कि वो एक बार भी ऐसा नहीं करेगा, ये होना ही नहीं चाहिए।
2: चांस देना बनता है
3: हर एक को। आज हमारे से भी कोई गलती हो सकती है, अगर हम गलती करते हैं और हमें कोई चांस देता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम कहते दोबारा नहीं हम कर सकते, हम इस व्यक्ति का फेथ नहीं तोड़ सकते। तो ये कह देना कि नहीं ये रेड फ्लैग है, ये एक बार हो गया तो रिश्ता ही खत्म, ऐसा नहीं होता। दो जने हैं रिश्ते के अंदर, हर चीज के लिए आपको तैयार होना चाहिए और कम से कम एक चांस तो हर एक को देना ही चाहिए। इतना जल्दी रिश्ता खत्म करना, वो भी तो फिर रिश्ते की कोई फाउंडेशन नहीं रही ना।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

0: इतना पसंद था ये गाना, इनफैक्ट अभी भी है, बट मेरे दो भाई यशराज मुखाटे एंड केतन सिंह हैव रूइंड इट फॉर मी नाउ। दैट वाज बेशरम रंग, इस हफ्ते गाना नंबर 7 पर।
1: सुरेन के साथ only on Mirchi, it's hot.
0: Truly one of the best songs this year. पठान के इस गाने ने पागलपन मचाया. It stayed on number 1 for so many weeks. लेकिन अब नई फिल्मों के आते खिसक रहा है थोड़ा थोड़ा. This week it's on number 7 from number 4 last week. And my name is Suren and this is the Mirchi Top 20. And ये जो दो दोस्त थे मेरे, केतन जो खुद एक रेडियो जॉकी रह चुका है and यशराज मुखाटे, इन दोनों ने दिमाग में अब ये नया वर्जन डाल दिया है। इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कि बेशरम रंग की जो लिखावट है वो थोड़ी ओल्ड स्कूल है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, एंड दीस टू डिसाइडेड दैट ये एक 60 के दशक का वर्जन बनाएंगे। एंड अगर रफी साहब इस गाने को गाते तो शायद ये कुछ ऐसा सुनाई देता।

आई हेट इट सो मच दैट आई एक्चुअली लव इट. मतलब हंसी भी आ रही है और नाज भी है इन दोनों भाइयों पर. खैर आगे बढ़ना है और गाना नंबर 6 हमारा इंतजार कर रहा है. इट्स अ ब्रांड न्यू सॉन्ग. इट्स फ्रॉम मिस्टर पंजाबी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सेल्फी. गाने का नाम है कुड़िये नी तेरी. इट्स मेकिंग इट्स डेब्यू हियर ऑन नंबर 6 ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन. नंबर 6.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए।
2: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
3: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा
2: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
1: अभी कोई और बोल रही थी।
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ, आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
1: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
7: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: आप सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
8: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, अब मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
1: थैंक यू
9: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
10: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
11: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
12: Your voice, your ideas, your future. Sujit Singh is running for Congress in New Jersey 12 to bring your voice, your ideas and your concerns to Washington and turn them into real legislative action for our district. It is your opportunity to shape the priorities that matter to our families and communities. Visit singforcongress.org and share your priorities and wishes today. Remember, your voice, your future. Sujit Singh for Congress. Paid for by Sujit Singh for Congress.
13: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
14: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
15: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
16: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
17: जैसी मामी मामी जैसी मामी मामी।
18: हाय आई एम पूजा बिजलानी एंड आई एम अ वर्किंग मॉम। And what makes me a super cool Jersey mom is because being a mother makes you a better person at work. You developed a lot of skills being a mother. I just to start to count a patience, multitasking, being positive, looking forward to the next things. All of this comes because you are kind of managing your children at home. And that kind of gives you that positive energy to kind of think rationally at work as well. not succumb to pressure. Or even if there's a pressure, for example, our moms, we always get these last minute project requests or last minute homework that just comes out of the bag at 8 o'clock at night. So how do we handle that? We take our cool, we start to think, how can we best accomplish? And I feel that kind of skill is exactly what we do at work as well. Sometimes there would be situations where something is due the next day, you know, you didn't plan for it. And at that point, because you've handled it, kind of naturally, your body is regulated to naturally handle that kind of pressure. And, you know, you handle situations with kids where they are sometimes going to be sick and you have to manage that, you have to manage home. So multitasking is something I feel that comes because we're trying to juggle and do a lot of things at the same time. So that makes you professionally a lot more rational in a lot of ways, makes you a lot more confident when you go because you are capable of handling not just one thing. You can focus on one thing at the same time, also give other things that are expecting from you. And, you know, because with kids, there's a lot of things you do that brings fun. So when you bring that fun element at work, you start to enjoy what you do. You're not monotonously working on spreadsheets or making presentations. The kids kind of make you enjoy what you do. Sometimes there will be games that they play. Sometimes they giggle about silly stuff. So thinking of that, I feel it kind of brings you that positive and happiness that keeps you going at work under pressure.
17: Jesse mommy, mommy, Jesse mommy, mommy.
9: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Jersey.

0: ताज्जुब नहीं होगा अगर ये गाना नंबर वन तक जाए, बिकॉज ऑल्सो इट इज माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द चार्ट्स, तेरे प्यार में बाय अरिजीत सिंह फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार। बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर दोस जिनको फिल्मों का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो ये फिल्म तू झूठी मैं मक्कार डायरेक्ट की है मिस्टर लव रंजन ने। एंड लव ने जो चार फिल्म में इससे पहले डायरेक्ट की हैं, ऑल ऑफ देम फीचर्ड हिज फेवरेट पेयर कार्तिक आर्यन एंड नुसरत भरूचा। अब कार्तिक तो नेक्स्ट लेवल स्टार बन गया है एंड सो इज नुसरत। सो लव ऑल्सो डिसाइडेड कि अब यार मैं बड़ी फिल्म बनाऊंगा एंड तब तू झूठी मैं मक्कार हैपेंड। मिर्ची टॉप 20 पे आई एम सुरेन एंड द वन थिंग दैट इज रियली अमेजिंग इज द न्यू पेयरिंग ऑफ द टू कपूर्स रणबीर एंड श्रद्धा। दोनों फिल्म फैमिली से हैं, दोनों फैमिली फ्रेंड्स, दोनों के डैडीज अच्छे दोस्त, बट अब तक दोनों ने साथ में काम नहीं किया था एंड द बेस्ट पार्ट they both actually look good together. But दोनों को एक दूसरे के साथ फिल्म करना क्या रास आया? जान लेते हैं।
1: Everybody knows that you know Ranbir is such a fabulous actor and I've always admired his work and ये experience करने के लिए on set with him बहुत मजा आया and he is really superb.
2: So I've known Shraddha since I guess she was born and I was born because our parents are friendly and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that, you know, we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication and fire, you know, to give her best. I think it is Love's genius that she casted both of us together. So thank you, Love.
3: Thank you.
2: I give you credit for this also.
0: I really like their chemistry and I hope it does work some magic. And kya hai ki Pritam Da ne jo gana banaya hai, uska zone, uski vibe ek aur gaane se kaafi milti julti hai. But usse pehle आपको बता दूं इस हफ्ते का गाना नंबर 3 कौन सा है।
4: तुम्हें जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए।
0: अब मैं क्या कह रहा था कि ये जो गाना है तेरे प्यार में, इट डज साउंड लाइक अनदर सॉन्ग दैट आई रियली लव। जो फीलिंग, जो वाइब थी लव आजकल 2 के गाने में, आई फाउंड इट हियर एज वेल एंड दैट इज व्हाई मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक है हां मैं गलत, वंस अगेन बाय अरिजीत सिंह एंड प्रीतम दा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन।

0: न्यू जर्सी की सड़कों पे हसल तो बहुत देखा होगा, पर असली हसलर से मिले हो? रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स जर्सी मॉम्स, उन हीरोज के नाम जिनके पास केप नहीं पर सुपर पावर्स बहुत हैं। मिलिए ऐसी ही सुपर मॉम से, उनकी अनकही कहानियाँ
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट 92.7।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: यू टर्न डाउन दैट जॉब टू बिकम अ डाइविंग इंस्ट्रक्टर?
7: या आई थॉट मा वुड से नो।
6: And
7: she said, build your life the way you dream it.
8: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product, raised you to become. Conditions apply.
9: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
10: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
11: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: इस गाने का ओरिजिनल 12 साल पहले ही तो आया था, इतनी जल्दी इतना पुराना थोड़ी ना हो सकता है कि इसका नया वर्जन निकालना पड़ जाए। प्रीतम दा को खुद ही के गाने रिहैश करने पड़ रहे हैं। मे बी ये मार्केट की डिमांड है, बट I don't think प्रीतम दा खुद ये करना चाहते होंगे। मिर्ची टॉप 20 पे इट्स मी सुरेन एंड कैरेक्टर ढीला है 2.0 इज द ब्रांड न्यू एंट्री ऑन द चार्ट्स एंड ये सीधा आया है नंबर 2 पर एंड दैट इज अनबिलीवेबल। और इस गाने की पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है कार्तिक आर्यन की खुद की पॉपुलैरिटी, क्योंकि आजकल कार्तिक जो भी करता है वो सोना बन जाता है एंड प्रीतम दा हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेनी हिट सॉन्ग्स इन कार्तिक्स 10-year-old करियर और ये बात कार्तिक खुद एक्नॉलेज करता है।
1: प्रीतम दा का जो म्यूजिक हमेशा रहा है, बीट एनी फिल्म ऑफ माइन, पिछले जो भूल भुलैया 2 आई थी या फ्रेडी भी आई थी, उन दोनों के भी गाने काफी चले थे, फ्रॉम द टाइटल ट्रैक टू काला जादू लास्ट ईयर, दिस ईयर ऑल्सो, अभी ये एक एक करके गाने और खुलने वाले हैं। इसमें मुंडा सोना हूँ अभी काफी चल रहा है एंड रिसेंटली मेरे सवाल का जो रोमांटिक ट्रैक है, अगेन इट्स ऑन, मतलब मैं ट्रेंडिंग लिस्ट बेसिकली, सो दीज आर ऑल वर्किंग एंड सो आई हैव बीन रियली लकी विद म्यूजिक एंड म्यूजिक काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एस्पेक्ट होता है एक एक्टर के करियर को, एक अलग सा उसको एक हीरोइज्म दर्शाने में या फिर उसको एक उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। सो आई हैव बीन बीट सोनू टीटू का म्यूजिक, बीट भूल भुलैया का म्यूजिक और बीट एनी अदर फिल्म ऑफ माइन, ये म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन लुका छुपी, तो आई थिंक ये फिल्म में भी वही हो रहा है शहजादा में एंड थिएटर्स में खींचती है ऑडियंस को, ये तो वो बहुत जरूरी है।
0: भाई को तो प्रीतम दा का साथ भी मिल गया, विच मीन्स ये एक सुपरस्टार होने का सबसे बड़ा सबूत है। रणबीर से पूछ के देखो, वो भी यही बताएगा। Alright, so now the number one song, मिर्ची टॉप 20 पे we have a new king। जिस गाने ने पिछले हफ्ते डेब्यू किया नंबर 3 पे, इस हफ्ते आ गया है सीधा नंबर 1 पे। Riding the Nostalgia Express, तनिष बागची की एक और उपज, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फ्रॉम अक्षय कुमार एंड इमरान हाशमीज अपकमिंग फिल्म सेल्फी। सो बेसिकली दो गाने ऑन द टॉप 2 पोजीशंस जो है पुराने गाने। Talks about your taste more than mine. Check it out. You're on the Mirchi Top 20. I am Sureen.
2: Number 1.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
6: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियूस, स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इसलिन।

0: Hi everyone, I'm Pallavi Tiwari. I'm a mom of two kids and I'm a Jersey mom. जब मैं मम्मी बनी तो मुझे ये समझ में आया कि first 2000 days of your child is very important in various aspects. Delivery होती है when you become a mom. आप मोटे हो जाते हो. You gain weight. आपके कपड़े आपको fit नहीं आते हैं. You don't like yourself looking in the mirror. And I was not that person. So it's been 6 to 7 years for me now that I'm doing strength training. And hands down, I mean, it's become so addictive to me that whatsoever it is, I can't leave my workout. I can't leave my gym routine for the day. Chahe din ke 10 exercises hain, bahut nahi hai, 25 minute hai, usme beti teen ne teen baar disturb kar diya, ek baar wo rone lag gayi, ek baar usko washroom leke jana tha. Par wo 20 minute ka exercise pura kara, bhale hi usme 40 minutes lag gaye. लेकिन करा. बेटा मेरे साथ पुशअप्स करता है और वो मुझसे अच्छा करता है, उसका फॉर्म मुझसे अच्छा है. छुट्टी के दिन दोनों आके चलो मम्मा एक्सरसाइज करेंगे, चलो स्क्वाट्स करेंगे. सवेरे उठते हमारे दिन की शुरुआत ऐसे होती है, कोई मेरे ऊपर चढ़ गया, मम्मा लेग प्रेस स्क्वाट्स विथ वेट कर रही है. अगर मैं कारपेट पे लेट गई तो चलो मम्मा लेग प्रेस करो, ऊपर आ जाएंगे मेरे. सो माई किड्स आर ऑल्सो. एंड फिर हम पार्क में जाते हैं तो हम जो मंकी बार्स होते हैं, वी डू इट टुगेदर. I also do it and show it to them and they also do it. So they know that mom loves fitness. And I'm so nice that I can see, it feels so nice that I can see ye unko bhi pass on ho raha hai. At some point in time, weight loss tha mera goal. Par ab weight loss nahi hai. Now it's gaining muscle mass. Skeletal muscle mass badhao. Strength badhao. Pull-ups karo. I'll be 40 next year. I want to be able to do pull-ups. I want to be able to do two sets of 12 push-ups each. So, अगर ये गोल मेरा 40 तक रीच हो गया, then I'm sorted.
1: Jersey mommy. Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La vieja la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो
3: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किस किस से पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना।
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
7: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं कुकड़ू को।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
9: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
10: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
11: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
12: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
13: ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
9: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਨੇਕ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1, ਜ਼ੋਹੋ 1। ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
14: Namaste, Islam and Shastriya Kal, Bhaiyo aur Behno. I'm Sujit Singh, running for Congress in NJ12, a historic opportunity to bring your voice to Washington. Visit singforcongress.org and get engaged.
15: June 2nd, 2026. Early voting dates, May 26th to May 31st. Sujit Singh is the change we need.
14: Read for by Sujit Singh for Congress.
16: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
17: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
16: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
17: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
18: Listener mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
19: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's

0: न्यू जर्सी की सड़कों पे हसल तो बहुत देखा होगा, पर असली हसलर से मिले हो? रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स जर्सी मॉम्स, उन हीरोज के नाम जिनके पास केप नहीं पर सुपर पावर्स बहुत हैं। मिलिए ऐसी ही सुपर मॉम्स से, उनकी अनकही कहानियाँ
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट 92.7।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्काटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
7: यू टर्न डाउन दैट जॉब टू बिकम अ डाइविंग इंस्ट्रक्टर?
8: या आई थॉट मा वुड से नो।
7: And
8: she said, build your life the way you dream it.
9: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Raised you to become. Conditions apply.
10: Tera kya hoga, Kalia?
11: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin. It's 11:30 AM. Mirchi, time check.
5: RK Jewels. Get real diamond jewelry at real price. Zero labor, zero extra charges. RK Jewels. Best quality, best price. TNC apply.

0: ऐसी मामी मामी।
1: आई एम अ काइंड ऑफ मदर कि जो चीजें एक्सेप्ट करना सीख गई है, जो पहले ऐसे नहीं थी, बट मेरे बेटे ने मुझे आज ये बना दिया है। स्ट्रगल रोज का है मदर्स का, इट्स नॉट अबाउट ओनली अ वन डे एंड प्रेज देम ओनली ऑन अ वन डे। सो मदर्स को क्या चाहिए, सिर्फ एक छोटा सा एप्रिसिएशन, बस आप वो दे दो, मदर्स खुश हो जाती है। उनको चाहिए थोड़ी सी हेल्प, ना कि आप फिजिकली ही करो, मेंटल सपोर्ट दे दो, वो स्ट्रांग हो जाती है, उनको बस वही चाहिए। आई एम अ स्पेशल किड मॉम, सो मैं सबसे पहले मेरे बेटे को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं यहाँ पे हूँ बस उसी की वजह से हूँ। सो जर्नी सबकी सेम नहीं होती है, बहुत डिफरेंट होती है सबकी, मेरी भी डिफरेंट है और स्पेशल मॉम्स की तो डेफिनेटली डिफरेंट होती है। और कैसा है, आज तक हमें ये चीज़ कभी पता नहीं चला कि स्पेशल मॉम्स क्या होती है, स्पेशल किड्स क्या होते हैं, हमने कभी आजू बाजू देखा नहीं होता है। तो मेरे लिए जब मेरा बेटा हुआ तब मेरे लिए ये बहुत शौक था जब उसके बारे में मुझे पता चला। व्हेन ही बॉर्न एट दैट टाइम ओनली इन फ्यू डेज वी गॉट टू नो अबाउट हिम, ही इज़ अ सीपी बॉय लाइक सेरिब्रल पाल्सी। सो ये डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं आप पे, फिजिकली मेंटली एवरीथिंग इमोशनली। ऑब्वियसली इमोशनली हर चाइल्ड डिपेंड होता है, बट इनके केस में है कि सारी डिपेंडेंसी आप पे ही होती है, आपको सब करना है इनका। और जब ये बॉर्न हुआ तब हमें ये चीज़ पता नहीं थी, लाइक एवरी अदर मदर हमने भी कुछ सपने देखे थे अपने बच्चे के लिए कि ये ऐसे स्कूल में जाएगा, ये करेगा, बहुत नॉर्मल चीज़ें, बट ये सब नहीं हुआ हमारे साथ। तो एक पॉइंट आया ऐसे कि हमें खुद को बहुत स्ट्रांगली खड़ा करना पड़ा एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। ये एक्सेप्टेंस आना बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज़ है कि हमारे साथ ये हुआ है और वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ये एक्सेप्टेंस आने के लिए बहुत टाइम लगता है एंड मैं वो सब स्पेशल मदर्स को मतलब वो इतनी स्ट्रांग होती है सच में कि ये वो एक्सेप्ट करके लाइफ आगे बढ़ती है उनकी। सो और क्योंकि हमें लाइफ में आगे चलना है, वी कैन नॉट स्किप इट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करो आगे चलो, फिर उसमें से हमें उसके तरफ हम किस नज़रिए से देख रहे हैं वो डिपेंड करता है। और वो तभी आता है जब हम इससे बाहर निकलते हैं। मतलब मेरे साथ तो इतने ऐसे, मैं आपको अगर अनुभव बताना चाहूँगी तो इतने हुए, जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मैंने तो ऐसे ऐसे सुना है कि आप क्या चाह रही है, आपका बेटा डॉक्टर बने, आपका बेटा इंजीनियर बनेगा, आप क्या चाह रही है। उस समय ऐसे लगता है डॉक्टर हमें पता है हमारा बेटा ये सब नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट आप बोलो मत ये सब चीज़ें, हमें बस ये बताओ हम चाहते हैं हमारा बेटा या बेटी जो भी है जिनकी, बस इंडिपेंडेंट बने किसी, क्योंकि लाइफ में किसके साथ कब क्या हो जाए यू नेवर नो। हमारे लिए होता है, मतलब मैं इसलिए ये सब जर्नी इसलिए बता रही हूँ कि एट दैट मोमेंट बहुत सारे ख्याल आते हैं हमारे मन में कि आगे क्या होगा, हमारे पीछे क्या होगा, जब हम चले जाएंगे उसके बाद क्या, मतलब ये चीज़ें हमारी कभी छोड़ती नहीं है हमारा पीछा। सिंपल चीज़ है, जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके बाद बोलने सीखता है, आई माँ पापा सब बोलता है, हमने आज तक वो वर्ड नहीं सुना। तो पहले ये सब चीज़ों का बहुत बुरा लगता था, अभी भी सोच के कभी कभी लगता है, डेफिनेटली वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट रोबोट्स कि हमें ट्रेन किया है अब ऐसे ही करना है, हम भी टूट जाते हैं, बहुत कुछ होता है, बट वी हैव एक्सेप्टेड इट। हमें अब मेन थिंग कि उसको देख के जो हमें खुशी मिलती है, ही इज सच अ स्ट्रांग बॉय। ये मुझे ऐसे लगता है कि ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, ये एक अलग सोल्स होते हैं, वो जब इस दुनिया में इस धरती पे आते हैं उनका एक पर्पज़ होता है इस धरती पे आने का। मुझे लगता है हर किसी को इनसे बहुत कुछ सीखने जैसा है। हम इसी लाइफ के पीछे, पैसों के पीछे जॉब करना चाहिए, वो लाइफ की ज़रूरत है, बट लाइफ, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, उसका हमारे जीवन का पर्पज़ क्या है, वो हमें इनसे सीखने जैसा है। और वो मुझे इस बच्चे से इतना कुछ सीखने मिला है, आज मैं ये बात कर पा रही हूँ, हंस पा रही हूँ, सिर्फ इसी की वजह से। मैं बहुत रोई हूँ, कभी कभार अभी भी रोती हूँ, ऑब्वियसली ब्रेकडाउन होता है, हमेशा हम हंसते खेलते नहीं रह सकते, बट इससे देख के ये इतने स्ट्रांग होते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, उसके बावजूद वो बच्चे स्माइल करते हैं। आप सोचो, उनकी कोई डिमांड नहीं। माई बॉय इज 9 ईयर्स ओल्ड, उसकी कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं। मुझे ये कपड़ा चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, नथिंग। खाना दो टाइमली, वो भी भूख लगता है, ही डजंट आस्क, वो भी भूख लगता है, बच्चा रोता है, शरीर की जरूरत है, इसलिए वो सब मिलता है। बट द थिंग इज कि मोह माया नहीं, प्यार नहीं किसी चीज से। तो उन उन सोल्स का एक पर्पज है यहाँ पे आने का। तो हम, मुझे लगता है सारे ह्यूमंस को ये सब सीखना चाहिए उससे कि हम क्यों आए हैं यहाँ पे, हमें भी ऐसे बनना चाहिए। हम ये मम्मियों को मैं सब ये बताना चाहूंगी, हम उनके लिए जी रहे, राइट? तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए उनके फेस का। और इससे हो गया ना कि सारी मम्मियाँ, और मुझे 100% श्योर है हर एक स्पेशल मम्मी ये इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। सब लोग यही सोचते हैं कि इनकी खुशी कितनी बड़ी है, इनका स्माइल देख के। और हमें ये सीख मिलती है कि छोटी छोटी अचीवमेंट्स में ही बहुत खुशी है। हम किसी बड़े करेंगे ऐसा नहीं, इनके छोटे छोटे माइलस्टोन। मेरा बच्चा अगर कुछ बोलने लगे, एक वर्ड बोल दे, तो हमें उसमें खुशी है। मेरा बच्चा, मेरा कभी वो हाथ अपने यूज नहीं करता, कभी गलती से मेरा उंगली पकड़ ले, ऐसा पकड़ ले, तो मुझे इतना लगता है कि मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नॉर्मल बच्चे तो करते ही ये सब, बट हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। आज ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, दुनिया में ऐसे कितने सारे बच्चे, या किसी को, जैसे आपने बताया कि किसी का बच्चा शायद एक्सपायर हो गया या कुछ हो गया, किसी बच्चा, उस मॉम को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं कर सकते। और ये जो कहते हैं ना लोग कि हम समझ सकते, नोबडी कैन अंडरस्टैंड मेरी सिचुएशन, ना आप समझ सकते हो ना कोई और समझ सकता है। उस माँ की सिचुएशन ना मैं समझ सकती हूँ, ना आप कोई समझ सकता है जिन्होंने अपना बच्चा खोया है। बट वो मॉम अगर आगे बढ़ के, क्योंकि उनको लाइफ तो जीना है, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो मॉम आगे बढ़ के अगर हंस के नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है, तो उसको बार बार वही चीज़ याद मत दिलाओ। समाज को, फैमिली को ये सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग भी उससे बाहर निकलना चाहते हैं। अब वही चीज़ दोबारा उसी में लगा लगा के उनको उसी सिचुएशन पे मत रखो। तो मैं सबको वही कहना चाहूंगी, मॉम्स तो सारी स्ट्रांग होती है, उसमें तो कोई डाउट नहीं।
0: जैसी मामी मामी, जैसी मामी मामी,
2: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: see mommy, mommy.
1: Hi everyone, I'm Pallavi Tiwari. I'm a mom of two kids and I'm a Jorsi mom. जब मैं मम्मी बनी तो मुझे ये समझ में आया कि first 2000 days of your child is very important in various aspects. Delivery होती है when you become a mom. आप मोटे हो जाते हो. You gain weight. आपके कपड़े आपको fit नहीं आते हैं. You don't like yourself looking in the mirror. And I was not that person. So it's been 6 to 7 years for me now that I'm doing strength training. And hands down, I mean, it's become so addictive to me that whatsoever it is, I can't leave my workout. I can't leave my gym routine for the day. Chahe din ke 10 exercises hain, bahut nahi hai, 25 minute hai. Usme beti teen ne teen baar disturb kar diya. Ek baar wo rone lag gayi, ek baar usko washroom leke jana tha. Par wo 20 minute ka exercise pura kara, bhale hi usme 40 minutes lag gaye. लेकिन करा. बेटा मेरे साथ पुशअप्स करता है और वो मुझसे अच्छा करता है, उसका फॉर्म मुझसे अच्छा है. छुट्टी के दिन दोनों आके चलो मम्मा एक्सरसाइज करेंगे, चलो स्क्वाट्स करेंगे. सवेरे उठते हमारे दिन की शुरुआत ऐसे होती है, कोई मेरे ऊपर चढ़ गया, मम्मा लेग प्रेस स्क्वाट्स विथ वेट कर रही है. अगर मैं कारपेट पे लेट गई तो चलो मम्मा लेग प्रेस करो, ऊपर आ जाएंगे मेरे. सो माई किड्स आर ऑल्सो. एंड फिर हम पार्क में जाते हैं तो हम जो मंकी बार्स होते हैं, वी डू इट टुगेदर. I also do it and show it to them and they also do it. So they know that mom loves fitness. And I'm so nice that I can see, it feels so nice that I can see ye unko bhi pass on ho raha hai. At some point in time, weight loss tha mera goal. Par ab weight loss nahi hai. Now it's gaining muscle mass. Skeletal muscle mass badhao. Strength badhao. Pull-ups karo. I'll be 40 next year. I want to be able to do pull-ups. I want to be able to do 2 sets of 12 push-ups each. So, अगर ये गोल मेरा 40 तक रीच हो गया, then I'm sorted.
0: Jassy mommy, mommy, Jassy mommy, mommy.
2: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana, rabana, burga, burga. La virba, la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे 2 मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: था? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: 2 दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा है?
3: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं। अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
12: ગુડ મોર્નિંગ, સાંભળી રહ્યા છો મિર્ચી, હું છું કૃતાર્થ. આજે કમ્પ્યુટરમાં 2 બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ બટન છે કે જેનું કોમ્બિનેશન બધી જ વસ્તુઓને ભૂલાવી દે, ગાયબ કરી દે. શિફ્ટ અને ડિલીટ. નોર્મલી અમે એકલું ડિલીટ દબાવો ને તો રિસાયકલ બીનમાં ગમે ત્યાં એ ડેટા સ્ટોર થયો રહે, એને રિકવર કરી શકાય એ છતાંય તમારા કમ્પ્યુટરમાં હોય, પણ શિફ્ટ અને ડિલીટ દબાવો એટલે પરમનન્ટલી ડિલીટ થઈ જાય. મને ઘણી વખત એવો વિચાર આવે કે જો મારા ને તમારામાં પણ કોઈ આવું બટન હોત કે શિફ્ટ અને ડિલીટ દબાવીએ, એટલે જે અમુક એવી વાતો કે જે મને ને તમને હમણાં સુધી હેરાન કરતી હોય, એવા રિલેશન્સ કે જે બહુ જ ઊંડા ઘા આપીને ગયા હોય, એ હંમેશાના માટે ડિલીટ થઈ જાય. વાત ખાલી એટલી છે કે ઘણી વખત સહન કરવું એના કરતાં ભૂલી જવું એ વધારે સારું હોય છે. ભૂલી જવું એ ક્યારેક ભાંગી જવા કરતા વધારે સારું. આજના દિવસે વેકઅપ વિચાર અને રિમાઇન્ડર ખાલી એટલું જ છે કે એક લિસ્ટ તો બનાવો કે કઈ કઈ બાબતો એવી છે કે જે તમારી ઈચ્છા છે કે તમે ભૂલી જાઓ, જે ભૂલવાથી તમારી મેન્ટલ હેલ્થ સુધરી જશે, અને પછી હું તમને ઉપાય કહીશ કે એને કેવી રીતે જીવનમાંથી, મગજમાંથી શિફ્ટ ડિલીટ કરવું. પહેલા લિસ્ટ બનાવી લો, લિસ્ટ બનાવીને મને મેસેજ કરજો. You are listening to Mirchi, it's hot. Good morning. Hopefully, baat samjhai hoi tumne.
13: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
14: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
15: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण. शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ. शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव.
16: Oak Tree
0: ఎంట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
16: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
17: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
18: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
17: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: न्यू जर्सी की सड़कों पे हसल तो बहुत देखा होगा, पर असली हसलर से मिले हो? रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स जर्सी मॉम्स, उन हीरोज के नाम जिनके पास केप नहीं पर सुपर पावर्स बहुत हैं। मिलिए ऐसी ही सुपर मॉम्स से, उनकी अनकही कहानियाँ
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट 92.7।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
10: It's 2:30 PM. Mirchi, time check.
11: RK Jewels. Get real diamond jewelry at real price. Zero labor, zero extra charges. RK Jewels. Best quality, best price. TNC applied.
12: Jessie mommy, mommy. Jessie mommy, mommy.
13: I am a kind of mother कि जो चीजें accept करना सीख गई है, जो पहले ऐसे नहीं थी, but मेरे बेटे ने मुझे आज ये बना दिया है. Struggle रोज का है, mothers का. It's not about only a one day. And प्रेज देम ओनली ऑन द वन डे। सो मदर्स को क्या चाहिए? सिर्फ एक छोटा सा एप्रिसिएशन, बस आप वो दे दो, मदर्स खुश हो जाती है। उनको चाहिए थोड़ी सी हेल्प, ना कि आप फिजिकली ही करो, मेंटल सपोर्ट दे दो, वो स्ट्रांग हो जाती है। उनको बस वही चाहिए। आई एम अ स्पेशल किड मॉम, सो मैं सबसे पहले मेरे बेटे को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं यहाँ पे हूँ बस उसी की वजह से हूँ। सो जर्नी सबकी सेम नहीं होती है, बहुत डिफरेंट होती है सबकी। मेरी भी डिफरेंट है और स्पेशल मॉम्स की तो डेफिनेटली डिफरेंट होती है। और कैसा है, आज तक हमें ये चीज़ कभी पता नहीं चला कि स्पेशल मॉम्स क्या होती है, स्पेशल किड्स क्या होते हैं, हमने कभी आजू बाजू देखा नहीं होता है। तो मेरे लिए जब मेरा बेटा हुआ, तब मेरे लिए ये बहुत शौक था जब उसके बारे में मुझे पता चला। When he born, at that time only in few days we got to know about him. He is a CP boy, like cerebral palsy. So, ये disabled child होते हैं, ये totally dependent होते हैं आप पे, physically, mentally, everything, emotionally. Obviously, emotionally हर child depend होता है, but इनके case में है कि सारी dependency आप पे ही होती है, आपको सब करना है इनका। और जब ये born हुआ तब हमें ये चीज़ पता नहीं थी। लाइक एवरी अदर मदर, हमने भी कुछ सपने देखे थे अपने बच्चे के लिए कि ये ऐसे स्कूल में जाएगा, ये करेगा, बहुत नॉर्मल चीज़ें, बट ये सब नहीं हुआ हमारे साथ। तो एक पॉइंट आया ऐसे कि हमें खुद को बहुत स्ट्रांगली खड़ा करना पड़ा, एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। ये एक्सेप्टेंस आना बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज़ है कि हमारे साथ ये हुआ है और वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ये एक्सेप्टेंस आने के लिए बहुत टाइम लगता है, एंड मैं वो सब स्पेशल मदर्स को मतलब वो इतनी स्ट्रांग होती है सच में कि ये वो एक्सेप्ट करके लाइफ आगे बढ़ती है उनकी। सो और क्योंकि हमें लाइफ में आगे चलना है, वी कैन नॉट स्किप इट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट करो, आगे चलो, फिर उसमें से हमें उसके तरफ हम किस नज़रिए से देख रहे हैं वो डिपेंड करता है। और वो तभी आता है जब हम इससे बाहर निकलते हैं। मतलब मेरे साथ तो इतने ऐसे, मैं आपको अगर अनुभव बताना चाहूँगी तो इतने हुए, जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मैंने तो ऐसे ऐसे सुना है कि आप क्या चाह रही है, आपका बेटा डॉक्टर बने, आपका बेटा इंजीनियर बनेगा, आप क्या चाह रही है? उस समय ऐसे लगता है डॉक्टर, हमें पता है हमारा बेटा ये सब नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट आप बोलो मत ये सब चीज़ें, हमें बस ये बताओ हम चाहते हैं हमारा बेटा या बेटी जो भी है जिनकी, बस इंडिपेंडेंट बने किसी, क्योंकि लाइफ में किसके साथ कब क्या हो जाए यू नेवर नो। हमारे लिए होता है, मतलब मैं इसलिए ये सब जर्नी इसलिए बता रही हूँ कि एट दैट मोमेंट बहुत सारे ख्याल आते हैं हमारे मन में कि आगे क्या होगा, हमारे पीछे क्या होगा जब हम चले जाएंगे, उसके बाद क्या, मतलब ये चीज़ें हम हमारी कभी छोड़ती नहीं है हमारा पीछा। सिंपल चीज़ है, जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके बाद बोलने सीखता है, आई माँ पापा सब बोलता है, हमने आज तक वो वर्ड नहीं सुना। तो पहले ये सब चीज़ों का बहुत बुरा लगता था, अभी भी सोच के कभी कभी लगता है, डेफिनेटली वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट रोबोट्स कि हमें ट्रेन किया है अब ऐसे ही करना है, हम भी टूट जाते हैं, बहुत कुछ होता है, बट वी हैव एक्सेप्टेड इट। हमें अब मेन थिंग कि उसको देख के जो हमें खुशी मिलती है, ही इज सच अ स्ट्रांग बॉय। ये मुझे ऐसे लगता है कि ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, ये एक अलग सोल्स होते हैं। वो जब इस दुनिया में इस धरती पे आते हैं, उनका एक पर्पस होता है इस धरती पे आने का। मुझे लगता है हर किसी को इनसे बहुत कुछ सीखने जैसा है। हम इसी लाइफ के पीछे, पैसों के पीछे जॉब करना चाहिए, वो लाइफ की ज़रूरत है, बट लाइफ, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, उसका हमारे जीवन का पर्पस क्या है, वो हमें इनसे सीखने जैसा है। और वो मुझे इस बच्चे से इतना कुछ सीखने मिला है। आज मैं ये बात कर पा रही हूँ, हंस पा रही हूँ, सिर्फ इसी की वजह से। मैं बहुत रोई हूँ, कभी कभार अभी भी रोती हूँ, ऑब्वियसली ब्रेकडाउन होता है, हमेशा हम हंसते खेलते नहीं रह सकते, बट इससे देख के ये इतने स्ट्रांग होते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, उसके बावजूद वो बच्चे स्माइल करते हैं। आप सोचो, उनकी कोई डिमांड नहीं, माई बॉय इज 9 ईयर्स ओल्ड, उसकी कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं, मुझे ये कपड़ा चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, नथिंग, खाना दो टाइमली, वो भी भूख लगता है, ही डजंट आस्क, वो भी भूख लगता है, बच्चा रोता है, शरीर की ज़रूरत है, इसलिए वो सब मिलता है। बट द थिंग इज कि मोह माया नहीं, प्यार नहीं किसी चीज़ से, तो उन उन सोल्स का एक पर्पज़ है यहाँ पे आने का। तो हम, मुझे लगता है सारे ह्यूमंस को ये सब सीखना चाहिए उससे कि हम क्यों आए हैं यहाँ पे, हमें भी ऐसे बनना चाहिए। हम ये मम्मियों को मैं सब ये बताना चाहूँगी, हम उनके लिए जी रहे, राइट, तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, उनके फेस का। और इससे हो गया ना कि सारी मम्मियाँ, और मुझे 100% श्योर है हर एक स्पेशल मम्मी ये इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। सब लोग यही सोचते हैं कि इनकी खुशी कितनी बड़ी है, इनका स्माइल देख के। और हमें ये सीख मिलती है कि छोटी छोटी अचीवमेंट्स में ही बहुत खुशी है, हम किसी बड़े करेंगे ऐसा नहीं, इनके छोटे छोटे माइलस्टोन। मेरा बच्चा अगर कुछ बोलने लगे, एक वर्ड बोल दे, तो हमें उसमें खुशी है। मेरा बच्चा, मेरा कभी वो हाथ अपने यूज़ नहीं करता, कभी गलती से मेरा उंगली पकड़ ले, ऐसा पकड़ ले, तो मुझे इतना लगता है कि मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नॉर्मल बच्चे तो करते ही है सब, बट हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। सो आज ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, दुनिया में ऐसे कितने सारे बच्चे, या किसी को, जैसे आपने बताया कि किसी का बच्चा शायद एक्सपायर हो गया या कुछ हो गया, किसी का बच्चा, उस मॉम को क्या करना चाहिए, कुछ नहीं कर सकते। और ये जो कहते हैं ना लोग कि हम समझ सकते, नो बडी कैन अंडरस्टैंड, मेरी सिचुएशन ना आप समझ सकते हो, ना कोई और समझ सकता है, उस माँ की सिचुएशन ना मैं समझ सकती हूँ, ना आप कोई समझ सकता है जिन्होंने अपना बच्चा खोया है। बट वो मॉम अगर आगे बढ़ के, क्योंकि उनको लाइफ तो जीना है, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो मॉम आगे बढ़ के अगर हंस के नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है, तो उसको बार बार वही चीज़ याद मत दिलाओ। समाज को, फैमिली को ये सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग भी उससे बाहर निकलना चाहते हैं। अब वही चीज़ दोबारा उसी में लगा लगा के उनको उसी सिचुएशन पे मत रखो। तो मैं सबको वही कहना चाहूँगी, मॉम्स तो सारी स्ट्रांग होती है, उसमें तो कोई डाउट नहीं।
12: जैसी मामी मामी, जैसी मामी मामी,
1: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी।

0: are you?
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
5: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर.
6: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स मरियु स्टनिंग पेंडेंट्स. कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इसलिन.
7: Radio Mirchi, it's on.
8: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

लटीना चिकनी चमेली कटकटरीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है। टीचर के लेक्चर याद हो ना हो, तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: real hard. न्यू जर्सी की सड़कों पे हसल तो बहुत देखा होगा, पर असली हसलर से मिले हो? रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स जर्सी मॉम्स, उन हीरोज के नाम जिनके पास केप नहीं पर सुपर पावर्स बहुत हैं। मिलिए ऐसी ही सुपर मॉम से, उनकी अनकही कहानियाँ
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट 92.7।
0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स। कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च चेस्तुन्नारा? कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
5: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स मरियु स्टनिंग पेंडेंट्स। कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इसलिन।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: Mirchi. Isca bana, pusca bana, saca bana. Burca, burca, burca. La vie pa la burca.
1: Mirchi, burca. Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे who's this?
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है ये? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कुकड़ू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
8: क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
10: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नारु कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
9: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सोलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियो स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इज़लिन।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: न्यू जर्सी की सड़कों पे हसल तो बहुत देखा होगा, पर असली हसलर से मिले हो? रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स जर्सी मॉम्स, उन हीरोज के नाम जिनके पास केप नहीं पर सुपर पावर्स बहुत हैं। मिलिए ऐसी ही सुपर मॉम से, उनकी अनकही कहानियाँ
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट 92.7।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुरा कर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
7: You turned down that job to become a diving instructor?
8: Yeah, I thought Ma would say no.
7: And?
8: She said, build your life the way you dream it.
9: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Raised you to become. Conditions apply.
10: Batting to kaafi saare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
11: Kohli goes down the ground.
10: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
10: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
4: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
6: Radio Mirchi, it's on.
7: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: ओ चन्न दी कुड़ी, ओ चन्न दी कुड़ी।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 6 p.m. Mirchi, time check.
2: RK Jewels. Get real diamond jewelry at real price. Zero labor, zero extra charges. RK Jewels. Best quality, best price. TNC apply. Only on Mirchi. It's hot.
3: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
4: हर हफ्ते मैं यहां आता हूं 20 गाने आप और ये काउंटडाउन. लेकिन आज एक बात कहनी है पहले. बॉलीवुड में बहुत शोर है, बहुत चमक, बहुत पीआर, बहुत नॉइज, और उस शोर में कुछ गाने होते हैं जो सच में फील किए गए हैं, लिखे गए हैं, जिए गए हैं. वो गाने अलग सुनाई देते हैं हमेशा. आज का शो उन गानों के बारे में है, उन लोगों के बारे में है जिन्होंने शॉर्टकट्स नहीं लिए, जिन्होंने शोर नहीं मचाया, बस काम किया और वो काम आप तक पहुंचा इस काउंटडाउन के जरिए, मेरे जरिए. Hi, I'm Suren Sundaram and this is the Mirchi Top 20, India ka sabse definitive Hindi music countdown. Aur main aapko wo sab sunaunga jo deserve karta hai suna jana. Number 20 se number 1 tak. To shuru karte hain with gana number 20, Ranveer Singh, Dhurandhar, Ishq Jalakar.

0: और फिर नंबर 19 पर एक डेब्यू सॉन्ग आदित्य रिखारी और साथ में है श्रेया घोषाल जो 2026 में बिल्कुल एक जेंजी सिंगर की तरह सुनाई दे रही हैं। दिस वन इज कॉल्ड दिल वाले चोर फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। क्लियरली चीटिंग इज कूल।
1: नंबर 19।

0: ये था क्या कमाल है नंबर 18 इस हफ्ते। एआर रहमान का म्यूजिक, इरशाद कामिल के अल्फाज और दिलजीत की आवाज। और इन गानों के बावजूद लोग कहते हैं नहीं यार, पुराने गाने ही अच्छे होते थे। मैं हूं सुरेन और आज मैं उस डिबेट को सीधा खत्म करना चाहता हूं। इरशाद कामिल, जिनसे ये बात मैंने खुद पूछी, उनका जवाब सुनिए।
1: Actually, I don't miss anything in today's song. क्योंकि हम पिछले पुराने गाने ना भाई साहब सिर्फ 200 सुन रहे हैं, आपको पता है, और पिछले 100 साल से हम फिल्में बना रहे हैं। आलमारा हमारी पहली पिक्चर थी जिसमें गाने थे, और अब तक हम पिक्चरें बना रहे हैं और रेडियो पे सिर्फ 200-250 गाने चलते हैं पुराने, वही बार बार जो हिट हो गए हैं, और उसके अलावा वो सब आप नहीं सुनते हैं जो आप तक पहुंचा ही नहीं है या आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आज के जमाने में भी आप आज के टाइम को थोड़ा सा वक्त दीजिए, 10-15 साल दीजिए, आप फिर यही बात दोहराएंगे कि पीछे वाले जो गाने थे वो बहुत अच्छे होते थे, आज से 20 साल पहले जो गाने लिखे जा रहे थे। सो आई डोंट थिंक आई डोंट मिस एनीथिंग।
0: इरशाद भाई ने जो कहा वो सिर्फ सच नहीं है, वो अनकंफर्टेबल सच है। हम 250 गाने सुनते हैं लेकिन बाकी के 50,000 का क्या? वो दब गए, दे वो फॉरगॉटन। इसलिए पुराना जमाना परफेक्ट लगता है क्योंकि उसके बेकार गाने इतिहास ने ऑलरेडी डिलीट कर दिए। आज का म्यूजिक वीक नहीं है, आज का म्यूजिक बहुत ज्यादा है, एंड उसमें से भी एक चन्ना मेरेया है, एक सैयारा है, और ये वाला गाना भी है, क्या कमाल है। ये गाने अगर 1975 में आते तो आज हम इन्हें क्लासिक सॉन्ग्स कहते। मेरे लिए आज का पिक ऑफ द वीक भी इरशाद कामिल का ही है। रहमान साहब का म्यूजिक, इरशाद भाई ने क्या कमाल लिखा है, एक गाना जो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका है, संग बाय मोहित चौहान। दिस इज तुम हो फ्रॉम रॉकस्टार। पिक ऑफ द वीक।

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: जैसी मामी मामी जैसी मामी मामी
2: आई एम संथिया लू आई एम अ न्यूयॉर्क रनवे फैशन डायरेक्टर एंड आई एम अ कूलेस्ट मॉम टू बी कूलेस्ट मॉम आई बिलीव यू नीड टू बी really open the conversation and to understand art of communication. So for all the mothers out there, if you want to be coolest mom, I would like to share this experience that to start with listening, start with all your conversation with a positivity and concern and caring before we continue talking to them and to laugh about it, joke about it, but yet the message has been passed in a nice and funny way. I have 3 kids. The older one is 28. The second one is 24. And the younger one is 17. I know that my oldest, when he is a teenager, he's really having a difficulties of dealing with maybe friends socially, that he has a little bit kind of don't want to talk to people. He was hiding somewhere to hide, and then he anything that come up his mind, he would always come to me and ask me questions, or he feel very comfortable talking to me. So for my older ones, and each kids are very different. Each kids, they are reacting a different. My second kids is, I want to say he is very intellectually very smart. So he always very comfortable talking to me about things that always he's thinking, social issues, current events, things like that. He's always like to talk to me, call me and talk to me. So the younger one is very fun kids. He will be okay to talk to me about his friend, what happened at school, you know, what happened when he yelled out by a teacher. He doesn't hide. He doesn't feel that if it's something that he did wrong, he cannot tell me. He will be, he knows that I will always there to support him in the way of listen to what they say, no matter it's good and bad. Every time the conversation I carry with them, when I talk to them, I don't start with criticism. I don't start with accusing them, or I don't start with the negativity. Whenever I think it really is the art of how you talk to your kids. So when the kids have specific issues, I would have spent enough of my time to listen. That is where that I feel that I'm very coolest mom.
1: Jessie mommy, mommy, Jessie mommy, mommy.
3: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
4: 92.7.
5: हेलो
6: हाय, ये कॉल बैंक से है. आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है. हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा. पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं.
7: विकी जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज.
5: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
7: एटीएम वाला पासवर्ड है सर. ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
5: हूँ. एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं.
7: हाँ जी,
5: हाँ बोलिए.
7: 33501.
5: अच्छा
7: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको. ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला.
5: हेलो,
7: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा. मैं फोन मिलाता हूँ. हेलो डार्लिंग, हाय.
8: हाय.
7: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
8: विक्की का पासवर्ड 33501. एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है.
7: धोबी से
8: पूछ लीजिए.
7: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड.
5: हेलो
7: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर. ये बेल जा रही है. हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
5: अरे भाई तू एक बात सुन, ये आपके हो
7: पास
5: क्या है?
7: आपके पास पासवर्ड होगा? 33501। हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
5: किससे पूछे जा रहे हैं?
7: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
5: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
7: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
5: मुझे बताना, ये सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना।
7: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
4: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
5: किसने दिया मेरा नंबर?
4: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
5: अरे मैं कुकड़ू को
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
9: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
10: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
11: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
12: Inefficient, very complex,
13: clumsy or
12: confusion hi confusion. Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
14: Are you a South Asian parent of a child with disabilities or special needs looking to connect with similar families? Reach out to SKN Foundation's SCOPE program for their parent support group, educational empowerment programs, IEP consultations, job skills training for teens, and inclusive events year-round.
15: You turned down that job to become a diving instructor?
16: Yeah, I thought Ma would say no.
15: And?
16: She said, build your life the way you dream it.
17: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Raised you to become. Conditions apply.
18: Batting to kaafi saare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
19: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
18: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
20: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
18: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
21: एक ही होता है।
18: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
3: Number 17.

जाइए सजना बाय जैस्मिन सैंडलर्स, मैन शी इज अनरेप्लिकेबल, वो सिर्फ वो है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक अलग बात करना चाहता हूँ, म्यूजिक के बारे में, पर्सनल म्यूजिक के बारे में। जब भी आप कोई गाना सुनते हैं, एक मोमेंट आता है उस गाने में, एक छोटा सा मोमेंट जो सडनली आपका हो जाता है। देखो सबका अलग होता है और वही तो मैजिक है। जैसे दीवानियत को ही ले लो, दुनिया उस कोरस पर दीवानी है, वो मल्टी वॉइस बिल्ड, वो सब जानते हैं, सब गाते हैं, लेकिन मेरे लिए वो गाना शुरू होते ही खत्म हो जाता है, पहले पल में, पहली आवाज।

ये, यही विशाल की ये सॉफ्ट ऑलमोस्ट हेजिटेंट आवाज, जैसे किसी दर्द को संभाल के रखा हो। वहां नहीं जाता जहां सब जाते हैं, सीधा अंदर पहुंचता है। और तब मुझे समझा कि गानों में सबका दरवाजा अलग होता है। ठीक चन्ना मेरे यार, अब ये तो एक अलग ही चैप्टर है। अरिजीत सिंह का वो हुक, इट्स अ क्लासिक, इट्स इमॉर्टल, सब जानते हैं। लेकिन जब वो गाना खत्म होने लगता है, जब बाकी सब ऑलरेडी आगे बढ़ चुके होते हैं, मैं वहां रुक जाता हूं।

ये रिपीट, ये बार बार कहना, जैसे कोई जाने से पहले एक बार और मुड़ के देख रहा हो। और फिर कुछ दिन पहले एक नया गाना आया और उसने वही किया जो विशाल की आवाज ने किया था, जो अरिजीत के उस आउट्रो ने किया था। एक स्पेसिफिक मोमेंट, एक स्पेसिफिक फीलिंग ऐसी जो मुझे लगा कि यार मैं तो यहां पहले भी आ चुका हूं, इस दर्द को मैं पहले भी महसूस कर चुका हूं।

ये वाला हिस्सा, बस ये वाला जो सडनली एक टाइम मशीन बन जाती है। और आज ये गाना पहली बार इस काउंटडाउन पे आ रहा है, नंबर 15 पे, फ्रॉम चांद मेरा दिल, दिस इज एतबार। सुनिए, पूरा सुनिए और ढूंढिए वो एक हिस्सा जो सिर्फ आपका होगा। नंबर 15।

0: धुरंधर रॉकिंग द काउंटडाउन दिस वीक ऑन नंबर 14 एंड रणवीर के साथ यू गॉट सारा अर्जुन, एक बहुत ही प्रॉमिसिंग नाम, लेकिन उससे भी ज्यादा एक प्रॉमिसिंग एक्टर। और इस नाम ने मुझे याद दिलाई एक और सारा की, सारा अली खान। 2018 केदारनाथ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक डेब्यू हुआ जिसे पूरी इंडस्ट्री ने नोटिस किया, मैंने भी उन्हें नोटिस किया, और उस फिल्म के बाद आई जेन्युइनली बिकेम अ फैन ऑफ सारा अली खान। लेकिन 2026 में पिक्चर क्या है? देयर्स अनन्या पांडे सोलो फिल्म्स, बड़े बैनर्स, देयर्स जानवी कपूर सोलो फिल्म्स, बड़े बैनर्स, एंड देन देयर इज सारा अली खान। पति पत्नी और वो दो में शी इज वन ऑफ द टू अफेयर्स। तीन लड़कियां, एक ही दरवाजा, तीन अलग अलग मंजिलें। और इस हफ्ते नंबर 13 पे एक गाना है कॉल्ड आवारा अंगारा फ्रॉम तेरे इश्क में, कृति सैनन का ये गाना है, जो इस जेनरेशन की सबसे कमिटेड एक्ट्रेसेस में से एक है। ये सब देख के दिल में एक सवाल उठता है यार कि सारा, वो केदारनाथ में दिखने वाली जो कमाल की टैलेंट थी, आखिर वो गई कहां? मैं आज भी मानता हूं वो टैलेंट अभी भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, लेकिन टैलेंट अकेला काफी नहीं होता, परफॉर्मेंसेस चाहिए होती हैं, चॉइसेस चाहिए होती हैं, एक कमबैक चाहिए होता है जो सिर्फ स्क्रीन पे ना हो। और उस कमबैक की याद, वो पहली बार, वो केदारनाथ वाली सारा अली खान। ये है इस हफ्ते का रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक, जानिसार बाय अमित त्रिवेदी।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

पति पत्नी और वो दोस्त है रूप दी रानी अपने दूसरे हफ्ते में है यूर ऑन नंबर 12 एक फिल्म चीटिंग के बारे में ग्लैमरसली हैप्पीली एंड कॉमिकली। हाय मैं हूँ सुरेंद्र सुंदरम और अभी जो आने वाला है नंबर 11 पे वो भी उसी दुनिया से है जवानी तो इश्क होना है। गाने का नाम है ब्याह करवा दो जी, ग्लॉसी कैची एंड इक्वली फॉरगेटेबल। और मैं जानता हूँ 2 महीने बाद ये गाना कोई नहीं सुनेगा। कैन आई बी ऑनेस्ट हियर, यार मैं थक गया हूँ। बीवी नंबर 1, नो एंट्री, दे दे प्यार दे, मर्डर, गहराइयां, कभी अलविदा ना कहना, और अब ये एक ही कहानी बार बार, अलग चेहरे अलग गाने लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला। और सच ये है कि हम और मैं भी इस हम में शामिल हूं, हम अपने ऑडियंस को बेवकूफ समझते हैं। हम सोचते हैं कि ऑडियंस कॉम्प्लेक्स स्टोरीज नहीं चाहती, उन्हें चाहिए सिर्फ चमक, उन्हें चाहिए सिर्फ शोर। वो लिसनर जो कानपुर में बैठा हुआ है, वो लिसनर जो दुबई में है, वो उतनी ही गहराई मांगता है जितनी कोई मांग सकता है, लेकिन हम उन्हें देते हैं क्योंकि हम में हिम्मत नहीं है कॉम्प्लेक्स लिखने की, कॉम्प्लेक्स दिखाने की, कॉम्प्लेक्स फील करने की। और जब कहानी में गहराई नहीं होती तो गाने में भी नहीं होती, इसलिए सैयारा जैसा गाना एक याद बन जाएगी मगर व्याह करवा दो जी नहीं बन पाएगी। फर्क सिर्फ फिल्म मेकर्स की गट्सी चॉइसेस का होता है और अभी वो गट्स कहाँ हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा काम है हर हफ्ते इस स्टूडियो में आपके लिए बेस्ट गाने ढूंढना उस शोर में से। और इस हफ्ते नंबर 11 पे है ये व्याह करवा दो जी, तब है जवानी तो इश्क होना है। नंबर 11।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
6: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च चेस्तुन्नारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
7: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स मरियु स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इज़लिन।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
8: नंबर 10।

यार ये गाना चांद मेरा दिल जैसे ही चलता है मेरे दिमाग में एक और ही गाना ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। आई एम श्योर कि आपके दिमाग में भी वही गाना चल रहा होता है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते और शायद कुछ करना भी नहीं चाहते। क्या

कोइंसिडेंस क्या है कि ऋषि कपूर साहब की वो फिल्म हम किसी से कम नहीं, वो गाना, वो फीलिंग, इट फील्स सो फ्रेश इवन नाउ। और यही तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो कोई नहीं बोलता। हमारे सबसे बड़े फिल्म मेकर्स, हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार्स, वो भी उसी फीलिंग के पीछे भाग रहे हैं, इंक्लूडिंग ए सन रणबीर कपूर, क्योंकि पापा की विरासत मिली जीन्स में, सरनेम में, लेकिन पहली बड़ी फिल्म के लिए उन्होंने सीधा पापा का गाना ले लिया।

0: सितारों से जुदा।
1: बचना है हसीनों, पूरी एक जेनरेशन नाच रही थी और उन्हें खबर तक नहीं हुई कि ये तो उनके अंकल ऋषि कपूर का गाना है। एंड देन यू गॉट शाहरुख खान, जिन्होंने किया वही काम जो सिर्फ शाहरुख खान कर सकते हैं। उन्होंने ऋषि सर का एक और गाना लिया और उस पर एक पूरी दुनिया खड़ी कर दी।

0: ओम शांति ओम। 2007 अ ब्लॉकबस्टर, एक गाना जो लगभग 50 साल पहले लिखा गया था और शाहरुख ने उसे इमॉर्टल बना दिया। ऋषि कपूर इजंट विद अस एनीमोर, मगर बॉलीवुड उन्हें कभी भूलने नहीं देगा एंड आई लव देम फॉर इट, इट विल कीप हिम अलाइव। लेकिन ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ खत्म नहीं होती। नंबर 9 पर इस हफ्ते है सैयारा, जिसका दिल मोहित चौहान की उस आवाज में धड़कता है जो एक था टाइगर में सुनाई दिया था। पुरानी रू नया टेक, हमेशा से हमेशा तक। दिस इज सैयारा बाय फहीम अब्दुल्ला ऑन नंबर 9।
1: नंबर 9।

ये था वाओ नंबर 7 लाउड कलरफुल 2026 की ब्लॉकबस्टर एनर्जी एग्जैक्टली एज एडवर्टाइज्ड। बट लेट मी टेक यू बैक टू 2006, 20 साल पहले। वो साल याद है? धूम, क्रिश, डॉन, लगे रहो मुन्ना भाई, बड़ी बड़ी फिल्म्स, बड़ा नॉइज और उससे भी बड़ी ओपनिंग्स। लेकिन आज 2026 में अगर मैं आपसे पूछूं कि उस साल की सबसे एवरलास्टिंग एल्बम कौन सी थी, वो कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। वो एक मिड बजट फिल्म थी जिसका नाम था गैंगस्टर। कंगना रनौत, अनुराग बासु डायरेक्ट कर रहे थे, शाइनी आहूजा थे लीड में। वो कहानी हम दोबारा नहीं खोलेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू हैड द मोस्ट म्यूजिक हैवी एक्टर इमरान हाशमी। लेकिन प्रीतम दान ने उस फिल्म के लिए जो म्यूजिक बनाया वो फिल्म से बड़ा निकला, कास्ट से बड़ा निकला, कॉन्ट्रोवर्सी से बड़ा निकला। और इस हफ्ते नंबर 6 पे है मैं और तू फ्रॉम धुरंधर 2, एक और गाना जो शायद अपनी फिल्म से बड़ा बन सकता है, लेकिन ये वक्त ही बता पाएगा। लेकिन गैंगस्टर के एक गाने

0: ने वक्त का इंतजार नहीं किया, वो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका था जिस रात वो रिलीज हुआ। 2 बजे की नींद, किसी का नाम, भीगी आंखें, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक फीलिंग है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। On a very special request, this is James with Bheegi Bheegi.
1: Special request song.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: जैसी मामी मामी जैसी मामी मामी.
2: हाय आई एम पूजा बिजलानी एंड आई एम अ वर्किंग मॉम एंड व्हाट मेक्स मी अ सुपर कूल जर्सी मॉम is because being a mother makes you a better person at work. You developed a lot of skills being a mother. Patience, multitasking, being positive, looking forward to the next things. All of this comes because you are kind of managing your children at home. And that kind of gives you that positive energy to kind of think rationally at work as well. Not succumb to pressure, or even if there's a pressure, for example, our moms, we always get these last minute project requests or last minute homework that just comes out of the bag at 8 o'clock at night. So how do we handle that? We take our cool, we start to think, how can we best accomplish? And I feel that kind of skill is exactly what we do at work as well. Sometimes there would be situations where something is due the next day, you know, you didn't plan for it. And at that point, because you've handled it kind of naturally, your body is regulated to naturally handle that kind of pressure. And, you know, you handle situations with kids where they are sometimes going to be sick and you have to manage that, you have to manage home. So multitasking is something I feel that comes because we're trying to juggle and do a lot of things at the same time. So that makes you professionally a lot more rational in a lot of ways, makes you a lot more confident when you go because you are capable of handling not just one thing. You can focus on one thing at the same time, also give other things that are expecting from you. And, you know, because with kids, there's a lot of things you do that brings fun. So when you bring that fun element at work, you start to enjoy what you do. You're not monotonously working on spreadsheets or making presentations. The kids kind of make you enjoy what you do. Sometimes there will be games that they play. Sometimes they giggle about silly stuff. So thinking of that, I feel it kind of brings you that positive and happiness that keeps you going at work under pressure.
1: Jessie mommy, mommy, Jessie mommy, mommy.
3: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
4: 92.7.
3: Mirchi.
5: हेलो
6: सर, वेरी गुड इवनिंग. मैं बैंक से बोल रहा हूँ. मुझे एक रेफरेंस दिया था सर. मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा. क्या आप मुझे 2 मिनट दे सकते हैं?
5: हाँ जी बोलिए.
6: सर हमारी एक स्कीम आई है सर. हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर. जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे.
5: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ. हिडन चार्जेस?
7: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है. अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती.
5: कौन बोल रही है?
6: सर रमेश ही बोल रहा हूँ. सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको. अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती.
5: ये स्कीम मुझे क्यों मिल रही है? मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
8: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं.
5: हेलो कौन बोल रहा है?
6: सर रमेश ही बोल रहा हूँ. मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है. आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो.
5: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
7: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल.
5: हेलो मैडम.
6: हाँ जी सर, रमेश बोल रहा हूँ. हाँ जी सर, रमेश बोल रहा हूँ.
5: कौन बोल रहा?
6: रमेश बोल रहा हूँ सर. से
5: अभी कोई और बोल रही थी.
6: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए.
5: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है इसमें? कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
9: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी.
5: कौन बोल रहा है?
6: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर. इसमें
5: 2 दिन बाद मुझे कॉल कर लेना.
10: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है. ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा. ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है.
5: कौन बोल रहा है भैया?
6: सर रमेश बोल रहा हूँ. आप यार उस पे क्यों जा रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
5: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है. नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे.
11: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार? आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
6: हम सबका दिमाग खराब हो गया. अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप. सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग. क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ आपसे. रमेश बोल रहा है. सर मेरी बात सुनिए सर. सर आप सर फोन मत काटिएगा.
12: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. ये सारी आवाजें मेरी हैं. अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं. आप मुर्गा बन गए. आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के.
13: थैंक यू.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
14: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
15: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
15: यू टर्न डाउन दैट जॉब टू बिकम अ डाइविंग इंस्ट्रक्टर?
16: या, आई थॉट मा वुड से नो। And she said, build your life the way you dream it.
17: For every mother who chooses belief over fear and raises you to become your best self. From Tanishq, this Mother's Day, enjoy up to 20% off on diamond value and on gold jewelry making charges. Also, 0% deduction on exchange of old gold above 18 carat. Celebrate her at Tanishq, 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Raised you to become. Conditions apply.
18: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है. लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
19: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
20: Tera kya hoga, Kalia?
21: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
20: Ab, mirchi kha.
22: Radio Mirchi, it's hot.
0: Only on Mirchi. It's hot.
14: Number 5.

तेईस हफ्ते मैन रियली गहरा हुआ अरिजीत सिंह का गाना जो हर बार नया लगता है। लेकिन कुछ दिन पहले आई थिंक रात के 3 बज रहे थे और मैं बस सोने ही जा रहा था एंड फिर एक वर्जन सुन लिया।

तेरा हुआ। इस बंदे का कोई नाम नहीं है, ये अपना चेहरा तक नहीं दिखाता, बस यूट्यूब पे एक चैनल है कॉल्ड मेलोडिक बैश, बस 3,000 लोग जानते हैं इसे, दैट्स इट, दैट्स हिज सब्सक्राइबर काउंट। लेकिन वो अकूस्टिक गिटार जो इतना अग्रेसिव है, तार पे तार, जैसे कोई उस दर्द को अंदर रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। द सॉन्ग इज इन सॉफ्ट, इट्स नॉट जेंटल, लेकिन इतना खूबसूरत है, इसलिए तो मैं इस गाने पे आके रुक गया। और वो आवाज, क्योंकि अरिजीत ने जिस तरह गाया है वहां पर भी दर्द है, लेकिन यहाँ अंदर से बिल्कुल एक अलग दर्द निकलता है। और यही तो म्यूजिक की सबसे बड़ी सच्चाई है, एक ही गाना हजार लोगों के हाथ से गुजर के हजार अलग कहानियां बन जाती हैं। मेलोडिक बैश की कहानी मुझे 3 बजे जागने पर मजबूर कर गई, लेकिन अभी के लिए इस फीलिंग के लिए एक और ऐसी आवाज जिससे मैं दूर नहीं हो पाता, नंबर 4 पे कोई और हो ही नहीं सकता, विशाल मिश्रा और उनकी दीवानियत। नंबर 4।

0: real yeah. न्यू जर्सी की सड़कों पे हसल तो बहुत देखा होगा, पर असली हसलर से मिले हो? रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स जर्सी मॉम्स, उन हीरोज के नाम जिनके पास केप नहीं पर सुपर पावर्स बहुत हैं। मिलिए ऐसी ही सुपर मॉम से, उनकी अनकही कहानियाँ
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, इट्स हॉट। 92.7
0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरु।
4: Your voice, your ideas, your future. Sujit Singh is running for Congress in New Jersey 12 to bring your voice, your ideas and your concerns to Washington and turn them into real legislative action for our district. It is your opportunity to shape the priorities that matter to our families and communities. Visit singforcongress.org and share your priorities and wishes today. Remember, your voice, your future. Sujit Singh for Congress. Paid for by Sujit Singh for Congress.
0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
5: प्यारी ब्राइड, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
1: Only on Mirchi. It's hot.
9: Number 2.

0: आरी आरी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। अगेन नंबर टू दिस वीक। माय नेम इज सुरेंद्र सुंदरम और ये है इस काउंटडाउन का आखिरी सेगमेंट। तो मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। बॉलीवुड में आज जो दिख रहा है वो सच नहीं है, वो रिव्यू खरीदा गया है, वो ट्रेंड प्लांट किया गया है, वो पब्लिक इज लविंग दिस फिल्म एक बिल है भाई जो सब भर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद करण जौहर कह रहे हैं।
1: Bollywood should stop doing PR. It would be much better and they should let their achievements speak for itself. Because unfortunately, all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay. If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. So I think we are on overdrive mode where it comes to PR. But now everything is available at a price and that is something that could be deeply upsetting because then you really can't gauge what's connecting and what's not. Because like now you're looking at everything and you're like, are people really liking it or have they been paid to like it? Like, I don't know. I can't tell half the time. Like, you know, many a time it's confusing me and because even I'm sometimes paying for it. So I don't know.
0: I don't know. ये वही बंदा है जिन्होंने इस मशीन को बनाया और अब वो खुद नहीं जानते कि ये मशीन आखिर क्या कर रही है। जरा सोचिए, दैट इज द ट्रूथ। एंड देन और फिर एक और कहानी आती है। दिसंबर 5, 2025 धुरंधर, मार्च 19, 2026 धुरंधर 2। रणवीर सिंह कोई इंटरव्यू नहीं, आदित्य धर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। वॉज देयर पेड पीआर? एब्सोल्युटली जीरो। ऑर्गेनिक पीआर? अगेन एब्सोल्युटली जीरो। सिर्फ एक फिल्म, उसके दो हिस्से और उसकी आवाज। 5 महीने बाद धुरंधर इज बॉलीवुड्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर और इस काउंटडाउन पे जो गाना नंबर 1 है 12 हफ्तों के लिए, नो पेड पीआर, इट्स अ जेन्युइन बैंगर। करण ने कहा था, लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ एंड रणवीर एंड आदित्य धर डिड जस्ट दैट। They let their work scream for themselves. This is Shararat, Dhurandhar, 12th week on number 1.